0: सोना चाहिदा
1: परोसा चाहिदा
0: क्वालिटी ते बाई बैक वी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ वी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493536042

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक माल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: मैंने नहीं सोचा था कि यह नौकरी मेरे लिए होगी, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि मेरे पास पहले से जो कौशल हैं, वे बिल्कुल वही हैं जो मुझे एक अच्छी जेल अधिकारी बनने के लिए चाहिए थे। अपने बातचीत के कौशल का उपयोग करना और एक अच्छी रोल मॉडल बनना, और इस सबका अनुभव मुझे मेरे सहयोगी साथियों के साथ होता है। यदि आप भी अपने कौशल का उपयोग करके एक ऐसा करियर बनाना चाहते हैं जो फायदेमंद और सुरक्षित हो, तो अभी आवेदन करें। सर्च करें करेक्शंस विक्टोरिया करियर्स, विक्टोरियन सरकार, 1 ट्रेजरी प्लेस, मेलबोर्न द्वारा अधिकृत।
3: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555।
1: We might all be different, but one thing unites us. We're all Victorians and we all deserve a say in its future. Are you ready to vote this state election Saturday 28 November? Not sure? Check your enrolled online. If you've changed your name or address, update your details. And if you've turned 18, you must enroll. So come on, Victoria. Make sure you're enrolled by 8 p.m. Tuesday 3 November and make your voice heard. Visit vec.vic.gov.au to enroll today. Authorised by S. Bloomel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
2: Australia cha apna car lena hai ya construction karwani hai? Mortgage refinance karwani, navi car khareedni ya business no aage vadhana hai? Ta tension kyun? Two-fold lending dandinong hai na? होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दिनाल तो हर डे ले बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग।
3: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्सटीट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस एमपी द्वारा अधिकृत सदर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य लेवल 1-670 चैपल स्ट्रीट साउथ 11 davidavis.com.au।
4: जी तुसी बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने, बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजरबा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
5: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, पार्टी करनु बनाए एकदम क्लासी, असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: जे तुसी बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
4: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्सटीट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस एमपी द्वारा अधिकृत सदर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य लेवल 1-670 चैपल स्ट्रीट साउथ यारा davidavis.com।

0: कस्टमर सर्विस दे नाल गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडीनोंग तुन्ना ज्वेलर्स परोसे दी निशानी। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनीना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनीना विच। ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नू आगे वधाना है, ता टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग।
1: एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं, आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं, अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तो हाडे ले कर देने। बंसल लॉयर्स, तो हाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: जुर्म सिर्फ इतना है कि उनको प्यार करते हैं, और जिनको हम प्यार करते हैं वो आज हमारे स्टूडियो में हैं। और पर ये जुर्म नहीं है, ये एक इत्तफाक है कि भीम सिंह चौहान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सिडनी में शोमैन के नाम से जाने जाते जितने भी इवेंट होते हैं, और वो बात बाद में करेंगे। पर भीम जी, सबसे पहले वेलकम सर, क्या हाल चाल है?
1: थैंक यू सो मच गौतम जी, इज अमेजिंग यू नो वी टॉकिंग टुगेदर टुडे।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने टाइम निकाला और बात करने के लिए रेडियो। हाँ जी, आए धंधा ठीक चल रहा
1: है? सब बढ़िया है। देखो धंधा, अगर आदमी की नियत अच्छी हो ना तो धंधा हमेशा अच्छा चलता है।
0: अरे सही बात है, क्या बात है। तो भीम जी, जैसे वैसे तो सिडनी में बहुत से लोग जानते होंगे, हर एक जितने बड़े इवेंट होते हैं पीछे, राहत फतेह अली खान, अभिजीत भट्टाचार्य, शान, और फिर अभी खान साहब का जो इवेंट होने जा रहा है, पहले भी जितने भी हुए हैं उनमें भीम सिंह चौहान एक नाम मशहूर होता है। भीम जी, मैं बाकी लोग तो आपको इवेंट ऑर्गेनाइजर या एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर जानते होंगे, मुझे भीम सिंह चौहान के एक और साइड पता है, तो मैंने सोचा कि स्टूडियो में बातें करने के लिए आज उस साइड को आज निकाल कर लाया जाए। डांस वगैरह नहीं हो सकेगा, बाकी फन तो हो सकता है, गाने वगैरह। आई थॉट के भीम सिंह चौहान कोई फिल्मों में, बॉलीवुड में वेटरन एक्टर का पहले किरदार निभा कर आ चुके हैं और अब यहाँ पर फिर है। Could it be a truth?
1: ये सच होता तो अच्छी बात होती, unfortunately नहीं है, सच ही है।
0: हाँ, नहीं ये सच नहीं है। पर खान साहब का इवेंट करवाने जा रहे हो, सो कैसे, मतलब बड़े इवेंट, काफी बड़े इवेंट, राहत फतेह अली खान, अभिजीत, शान, और ये अभी ये बिग इवेंट्स होते हैं, ये बिग इवेंट्स, बिग लायबिलिटी, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिग रिस्क
1: 100%
0: एंड दैट टू इन ऑस्ट्रेलिया, जहाँ की ये मार्केट नहीं है ना, क्योंकि आप एक ऐसी कंट्री में बैठे हो जहाँ पर नेटिव्स ऐसे कलाकारों को नहीं जाते। हाँ। एक कम्युनिटी को टारगेट करना पड़ेगा।
1: जी हाँ जी, बिल्कुल,
0: कम्युनिटी बिजनेस आपके साथ
1: आएगा। इट इज कम्युनिटी बिजनेस।
0: कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे ए से लेकर जी तक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना?
1: इट इज वेरी हार्ड, यू नो, कि आप सबसे पहले आर्टिस्ट के बारे में रिसर्च करना पड़ता है। अगर हम नेशनल प्रमोटर बनते हैं तो वी हैव टू हैव अ रिसर्च अबाउट आर्टिस्ट, अनलेस इज आर्टिस्ट ओनली वेन नोन, लाइक इफ द सोनू जी हैं, राहत साहब हैं, मान साहब हैं, शान हैं, इनका कोई ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अदर आर्टिस्ट जो होते हैं उनके थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है। हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं कि प्लीज कॉल अस, यू नो, गिव अस अ स्टेज, यू नो, देन थोड़ा उसका रिसर्च करते हैं, देन वी टॉक टू देम एज वेल, एंड उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी कम्युनिटी है, बिकॉज कम्युनिटी इवेंट्स आल्सो देयर एज वेल, लाइक सम पंजाबी सिंगर्स कमिंग फ्रॉम पंजाब, एंड वी हैव नॉर्थ इंडियन एज वेल, व्हिच इज मोस्टली हिंदी स्पीकिंग और हिंदी अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस, आई वुड से एज वेल, तो दैट्स डिफरेंट ऑडियंस एज वेल। देन वी डोंट टारगेट द साउथ इंडियन कम्युनिटी बिकॉज इट्स अ डिफरेंट कल्चर देयर एज वेल, सो बट दे आल्सो डू their own events, you know,
0: Telugu event,
1: Telugu okay. events,
0: Malayalam
1: event, so they do very well. So sare research karne ke baad then just we work out whether it is feasible for us financially or not, and then we negotiate with the artist as well, look, this is our profit and loss, you know, PNL bolte hain, and that's aap yahan kahan fit ho rahe hain dekh liye aap, and we of course we want to have you, but this would be our price, affordable. And most of them, they say yes.
0: आ जाते
1: हैं। Yeah,
0: let's talk about your history, background के बारे में। इंडिया में आप राजस्थान से?
1: हाँ जी, मैं राजस्थान से हूँ, और बहुत ही खूबसूरत शहर है।
0: उदयपुर
1: झीलों
0: का शहर,
1: उसे बोलते झीलों की नगर।
0: हाँ,
1: सिटी ऑफ लेक्स।
0: कितनी झीलें हैं वहाँ पर?
1: अनगिनत अनगिनत, हर एक 25-30-40 किलोमीटर एक लेक मिलेगी।
0: अरे वाह, खूबसूरत लोग है, बड़े रॉयल सिटी,
1: रॉयल सिटी, वेरी ग्रीन।
0: सो यू बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उदयपुर?
1: यस।
0: अरे वाह,
1: सो मेरा सौभाग्य की मैं इतनी खूबसूरत सिटी से आया हूँ।
0: क्या बात,
1: और यू नो तो इतने खूबसूरत लोग हैं वहाँ के। ऑफ कोर्स लोग तो सभी जगह के अच्छे होते हैं, लेकिन जो मेरे मेमोरीज है जिनके साथ, वो लोग काफी अच्छे थे। थिएटर से जुड़ा, रेडियो से जुड़ा,
0: अच्छा,
1: टेलीविजन से जुड़ा, सो सारी ये मेमोरीज, यू नो, इन द वेस्ट जोन कल्चर सेंटर भी है, वहाँ से भी मैं काफी।
0: हाँ, राइट, तो वहीं से इस इंडस्ट्री में फिर आना हुआ, ऐसे थोड़ा इवेंट इंडस्ट्री।
1: नो, आई थिंक इट्स अ बोर्न, मैं पैदा ऐसे ही हुआ, बचपन से ही कुछ करती था, घर पे हो या कहीं भी हो, यू नो, कुछ मस्ती करता
0: परिवार है। जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इवेंट इंडस्ट्री?
1: नहीं नहीं, कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं, मैं एक ही बंदा हूँ। बोलते यही मस्तियाँ करता रहता है, यू नो, उसी को स्टेज पसंद है, ये पसंद है, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करना पसंद है, यू नो, वो मैं आज भी मैं हूँ, कोई भी नहीं आज भी घर में।
0: What was your age when you started organizing events? First event,
1: छोटा बड़ा कैसा सा? I attend children theater. अरे? In Udaipur when I was 9 years old.
0: क्या बात है?
1: And the children theater with a few, you know, people from Udaipur and a few pass out from National School of Drama.
0: Acting का कीड़ा काट के?
1: Acting, उस वक्त acting ही करता था मैं। इतना mature नहीं था कि मैं कुछ direction करूँ या कुछ other सेक्शन ऑफ द थिएटर में जाऊं। तो जैसे जैसे बड़ा होता रहा, थिएटर बड़ा करता, पढ़ता भी अच्छा, पढ़ने भी अच्छा था, तो इसलिए कोई बोलता नहीं था कि ये नाटकबाजी क्या करता है।
0: पर हाउ डिड यू चूज इट? मतलब अपने आप क्या स्कूल में कि
1: अपने आप करना है? नहीं, अपने आप को स्कूल के फंक्शन होते थे वो करते थे, फिर वो चिल्ड्रन थिएटर ज्वाइन कर लिया जो कि वहाँ चलता था, तो वो ज्वाइन किया। फिर बड़े हुए कि जब तक 16 साल का पहुंचा था, मैंने कहा आई वांट टू डू माय सेल्फ।
0: अच्छा,
1: आई वांट टू डू इट डायरेक्ट प्ले।
0: अच्छा,
1: तो जो जिस चिल्ड्रन थिएटर में मैं
0: चाइल्ड आर्टिस्ट
1: के काम करता हूँ, काम तो क्या करता है, जिस लाइक जुड़ा हुआ था, उनको मैंने बोला आई वांट टू डू, बोले तो छोटा सा है क्या करेगा।
0: अच्छा,
1: मैंने कहा लेकिन मैं करना चाहता हूँ सर, जो मैं सीनियर जिनसे सीखा था, मैंने कहा आपसे सीखा है और मेरे दिमाग में कोई दो तीन प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आई वांट टू डू इट। बोले नहीं नहीं, छोटा सा है, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वी वोंट लेट यू नो, वी हैव आवर रेपुटेशन एंड दिस। ऑफकोर्स सही बात है, मैं छोटा था, उनकी भी रेपुटेशन थी, उनकी संस्था का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम उसके साथ,
0: क्योंकि जो प्ले होते हैं वो वन गो होते हैं, रीटेक का
1: चांस नहीं है। देन आई स्टार्टेड, ओके नो, आई स्टार्ट माय ओन इंस्टीट्यूशन।
0: अच्छा,
1: चिल्ड्रन थिएटर ऑफ उदयपुर।
0: अरे
1: वाह। एंड आई गेदर सो मेनी पीपल, आई वाज यंगेस्ट पर्सन वाज होल्डिंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशन।
0: क्या बात है।
1: एंड आई स्टार्टेड एंड आई डिड बैक टू बैक 3-4 प्ले।
0: अच्छा,
1: एंड दैट वाज वंडरफुल सक्सेसफुल, वाजंट प्रोफेशनल, इट वाज एमेच्योर थिएटर, बट
0: पर वैसे ही डन वेल, आपको एक प्ले का एक्सपीरियंस
1: हो गया। देन आई स्टार्ट हैविंग ऑल दिस ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, यू नो,
0: क्योंकि वहां पर प्रमोट करते हैं,
1: यहां प्रमोट करते हैं। देन दिस माय जर्नी स्टार्टेड एंड देन आई नेवर लुक बैक। एंड पढ़ाई भी कर रहे थे, थिएटर भी कर रहे थे, एंड देन या जस्ट कैरी ऑन सिंस देन, आई नेवर स्टॉप इन टिल टुडे, यू नो।
0: वाह, क्या बात है। फिर वहां से नाटक वगैरह जो आप बोल रहे हैं, टीवी इंडस्ट्री, वो कैसे लिंक हुआ फिर? थोड़ा और
1: लिंक बनते गए।
0: अच्छा, उदयपुर में रहते
1: हुए सबसे बड़ी बात है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी।
0: मैं वही पूछने लगा, मैं कहा वो कई बार होता है ना, टीनेज लड़का घर से भागकर
1: नहीं नहीं
0: बागी होकर मुंबई चला गया।
1: नहीं, वो नहीं था।
0: पहली ट्रेन पकड़ के
1: नहीं, वो घर से नहीं भागा, तो सारा लिंक उदयपुर में ही बने। उदयपुर में अपना ऑल इंडिया रेडियो भी था, यू नो, वहां से जुड़ा, युवाणी के उनके कार्यक्रम हुआ थे, तो उस कार्यक्रम से मैं जुड़ा, मुझे सब्जेक्ट देते थे तो सब्जेक्ट में मैं बोलता था, इट वॉज वंडरफुल, एंड थिएटर भी कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था, तो वॉज अ फुलो।
0: And you have done ये जो stage hosting है, more than 300
1: yes shows. Yes, yeah, उसका वो अच्छी बात है। आवाज़ होने का 18 साल का था मैं उस वक्त, तो वहाँ एक वेस्ट जोन कल्चर सेंटर खुला था,
0: right,
1: जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, तो दे वर लुकिंग फॉर, यू नो, सो लॉट ऑफ पीपल, एंड आई वाज वन ऑफ देम, आई वाज यंगेस्ट पर्सन देयर, सो दे हैड ऑडिशन, मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन में भी सिलेक्शन हुआ मेरा, देन दे गिव मी ए 40 आर्टिस्ट।
0: अच्छा,
1: अराउंड
0: किस लिए?
1: वेस्ट जोन, टू परफॉर्म अराउंड राजस्थान, इट तहसील, इट ढाणी, इट सिटी में हमें परफॉर्म करना।
0: सब्जेक्ट क्या होते थे?
1: सब्जेक्ट अपने
0: सोशल इश्यूज,
1: जो नॉन सोशल इश्यूज नहीं, अपना जो लोक संस्कृति है,
0: जो
1: लोक स्वरूप है,
0: राइट,
1: उसका बीड़ा, उस क्या बोलूंगा, उसको प्रिजर्व करना था हमें, क्योंकि वो लुप्त हो रहा है ना आजकल, हमारी लोक संस्कृति लुप्त हो रही है।
0: राइट,
1: हम क्या थे, क्या नहीं थे, लंगा बंधु से, आप देखो नाम सुना कि कैसे बालम पधारो हमारा देश, जो गाते हैं लोग उनको लंगा से बोलते हैं।
0: अच्छा,
1: तो वो भी बेचारे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं ना, क्योंकि
0: थोड़ा सा बताइए राजस्थानी कल्चर के बारे में।
1: तो वेस्ट जोन कल्चर सेंटर क्या करता था कि उसके जोन है,
0: आई नो, नॉर्थ जोन हमारे पटियाला में,
1: आप कटा, तो हमारे जोन में आया था राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एंड दमन एंड दीव।
0: अरे वाह।
1: सो मेरे पास ये चारों स्टेट के आर्टिस्ट थे। and I was hosting the show. And we have a one more person we call program officer above me, who can taking care of all of them. You know, तो उनको ले जाते हर राजस्थान के हर तहसील में, हर ढाणी में, हर शहर में, उन सबको ले जाके बताते दिस इज आवर कल्चर एंड वेस्ट जोन कल्चर. एंड उनको हर एक शहर में जाते हैं.
0: अच्छा.
1: एंड इट वॉज अमेजिंग. यू नो, बाकी राजस्थानी कल्चर तो आप जानते हैं, इज अ वेरी कलरफुल. जैसे पंजाब में अपने कितने सिंगर्स होते हैं,
0: ऑफ कोर्स
1: जो यू नो, उस राजस्थान के अंदर भी लंगास बंधु हैं.
0: लंगास
1: एंड दे मोर क्लासिकल नेचुरल. आई थिंक दे लर्न देमसेल्फ और मे बी उनका जो अपना घराना होता है उससे अपने आप सीखते हैं वो लोग. एंड ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो लोग.
0: अच्छा.
1: तो इसलिए वो बेचारे टूरिज्म पे ही निर्भर करते हैं.
0: अच्छा.
1: तो या तो घर के बाहर बजा रहे हैं या किसी महल के बाहर बजा रहे हैं. आई वोंट से दिस इज अ बैगिंग, वो अपनी कला को सेल,
0: इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं,
1: एक तो सारंगी है.
0: सारंगी.
1: हाँ, सारंगी से इन्हें होती है वो टटर करती है, खड़ताल. हाँ, उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है. प्लस
0: आपने म्यूजिक में जाने की कोशिश की थी?
1: नहीं, कान सिंह
0: मैं गाने गवाना चाहता था आपसे.
1: नहीं नहीं, ऐसे तो कैजुअल गाने गाते हैं, ऐसी बातें. लेकिन नहीं नहीं, मैं ये क्या एक भगवान की देन होती है.
0: हर कोई गॉड गिफ्ट होते हैं,
1: गॉड गिफ्ट होती है, उसके साथ बोन होता है वो. हाँ, ये हो सकता है कि उसके पास वो चीज होती है, उसको तराश हम सकते हैं. ठीक है,
0: वर्क करना पड़ता है,
1: वर्क करना पड़ता है, तराश हम सकते हैं. लेकिन अगर मैं मुझे अगर संगीत सीखना, अगर मुझे गिटार सीखना फॉर एग्जाम्पल, आई कांट, क्योंकि मेरे पास वो ब्रेन नहीं है. यू नो, वो जो एक आई थिंक भगवान देता है, वो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो भगवान देता है, वो ब्रेन नहीं है. और ब्रेन होती है
0: थोड़ा सा राजस्थानी कल्चर में लेकर जाना चाहता हूँ. आपने सुना है ये गाना? आपने क्या सुना है? आप ही का गाना है. साथ साथ गुनगुना सकते हो.

0: बॉलीवुड में इस थोड़ा स्टीरियोटाइप कर देते हैं, डू यू थिंक के राजस्थानी कल्चर को, जो राजस्थानी कल्चर की आती है बात, यू नो इट इन एंड आउट, राजस्थान में तो खूब ट्रैवल किया आपने।
1: हाँ देखिए फिल्मी में तो क्या थोड़ा कॉस्मेटिक देना पड़ता है उनको, थोड़ा सा यू नो जो 100% जो होता है राजस्थान में वो तो बताते नहीं फिल्म में, थोड़ा सा
0: पंजाब की बात है, वही बल्ले बल्ले पाजी, वही साग, वही मक्की दी, बस वही बातें होती रहती हैं
1: बस।
0: और राजस्थान के बारे में भी वही सारंगी बजा रहे हैं, बाहर राजस्थान में एंट्री हो रही है और वो रेतीला इलाका है और बस यही राजस्थान
1: है, बस यही राजस्थान बताते हैं। बाकी तो राजस्थान अगर आप जाते हैं तो राजस्थान इस वजह बहुत ही रंगीला है, इसलिए बोलते रंगीलो राजस्थान, मारो पधारो मारे देश।
0: और बड़ा क्योंकि बड़ी स्टेट है, अगर नॉर्थ वाली साइड देखेंगे जो बीकानेर हनुमानगढ़ वो साथ थोड़ा पंजाबी टच है, मिड में आएंगे एक थोड़ा वो मेवाड़ी टच है, और साउथ में थोड़ा सा जाएंगे गुजराती टच है, तो राजस्थान में भी एक वेरिएशन
1: yes,
0: देखने को मिलता है।
1: अगर मैं बीकानेर की बात करता हूँ, बीकानेर इज नॉट पंजाबी टच,
0: हाँ नहीं ऊपर हनुमानगढ़ वगैरह हो सकता है,
1: गंगानगर इज लाइक मोस्ट ऑफ पीपल स्पीक पंजाबी, दे है राजस्थान लेकिन पंजाब से बॉर्डर से है तो पंजाबी कल्चर वहाँ ज्यादा आपको मिलेगा, यानी हनुमानगढ़ इस बार तो वो है। बाकी सब तरफ जो आप बोल रहे हो मारवाड़ी आता है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर,
0: सेंट्रल राजस्थान जो है,
1: हाँ ये मारवाड़ी का इलाका है।
0: डू यू गो ऑफन राजस्थान?
1: मैं एवरी ईयर और एवरी टू ईयर्स में निकलता।
0: फैमिली वहीं पर? अभी
1: मेरे दो ब्रदर वहीं हैं, बाकी सारे बच्चे यही पैदा हुए हैं वो ना, तो या
0: तो ऑस्ट्रेलिया कैसे आना हुआ फिर?
1: देखिए मैं न्यूजीलैंड से अराउंड 14 इयर्स एगो,
0: पहले न्यूजीलैंड गए?
1: हाँ न्यूजीलैंड था, और 17 इयर्स।
0: अच्छा, और न्यूजीलैंड में किस सिलसिले में? स्टूडेंट?
1: नो स्टूडेंट, वही अगर वही बात है कि इवेंट्स की वजह से।
0: हाँ
1: तो आई वाज डूइंग द इवेंट्स इन उदयपुर एंड मुझे अपॉर्चुनिटी आई न्यूजीलैंड की।
0: अच्छा,
1: कि वुड यू लाइक टू डू सम थिएटर वर्कशॉप, चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप देयर, एंड
0: अरे
1: वाह से यार।
0: एंड यू वर अबाउट व्हाट एज?
1: 19 साल का था, 19 इयर्स।
0: ठीक है,
1: यार ये कहाँ कैसे जाऊँगा, क्या करूँ, जानता भी नहीं हूँ कुछ नहीं, और अच्छा अंग्रेजी आती है, सबको आती है थोड़ी बहुत, लेकिन मैंने कहा वहाँ तो पूरा अंग्रेजी, पूरा इंग्लिश देश है ना, मैंने कहा यार वहाँ पता नहीं कैसे लोग बोलते होंगे, समझ में आएगी नहीं आएगी, मैं बताऊंगा उनको वो समझ में आएगा नहीं आएगा मेरा इंडियन एक्सेंट, यू नो, तो हम तो हॉल को भी हॉल बोलते हैं, भले कौन सा भी हॉल हो, हमारे प्रोनाउंसिएशन से एक ही निकलता है, ये गड़बड़ हो जाएगा। अभी भी हम तक अभी भी अपने वी हैव इंडियन एक्सेंट, यू नो,
0: ऑफ कोर्स
1: वी डोंट डिनाइट, एंड दिस इज आवर
0: इंडियनिज्म, तो नहीं निकल सकता,
1: तो दिस इज रियलिटी, एंड यू नो, सो तो हिम्मत करके चला गया।
0: अच्छा,
1: एंड फिर वहाँ वर्कशॉप वगैरह की मैंने वहाँ के, और
0: न्यूजीलैंड में, कौन सी कंट्री में, सॉरी कौन सी सिटी में?
1: वेलिंगटन
0: में।
1: तो मैंने वहाँ वर्कशॉप की दो तीन, और दो प्ले मैंने डायरेक्ट किए वहाँ।
0: एंड यू वर देयर फॉर अबाउट कितने टाइम?
1: 3 मंथ्स, वाज 3 मंथ्स देयर, एंड मैंने वो दो प्ले डायरेक्ट किए, एंड दे वेंट वेरी वेरी सक्सेसफुल। तो फिर मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा था, मुझे निकलना था, तो मैं वापस आ गया। अच्छा। लेकिन मेरे शो चलते रहे वहाँ
0: न्यूजीलैंड,
1: और हाँ परफॉर्म बाय बच्चों, चिल्ड्रन थिएटर था तो चिल्ड्रन थिएटर ही किया मैं, तो आई वाज स्पेशलाइज इन चिल्ड्रन थिएटर, तो वो शो चलते रहे, प्रोफेशनली चलते रहे, लोग टिकट लेके आते।
0: अरे वाह,
1: तो बड़ा सक्सेस चला गया, तो देखो व्हाई नॉट बीम, यू कैन कम बैक। तो बाय टाइम मैं 20 साल का हो गया था तब तक।
0: अच्छा,
1: यू नो, तो एक डेढ़ साल पहले की बात की, 20 साल का हो गया तब तक मैं, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मेरा एक जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में मैं कर रहा था।
0: अच्छा, डिप्लोमा
1: मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा,
0: पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा
1: तो कर रहा था, मैंने कहा ये फिनिश हो जाए उसके बाद आऊंगा, ये मई जून में मेरे एग्जाम्स हैं, और नहीं वी नीड यू बिफोर।
0: अच्छा,
1: और वहाँ डिले हो गया यार, ये दो साल से मेहनत कर रहा हूँ, यू नो, ये करूँ
0: पढ़ाई छोड़ दूँ बीच में,
1: तो फिर मैंने कहा यार पढ़ाई तो वापस कर लेंगे, ये मौका नहीं मिलेगा।
0: राइट,
1: तो आई वेंट बैक, तो डिप्लोमा छोड़ दिया एग्जाम के 3-4 वीक पहले।
0: और ये न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था?
1: ये न्यूजीलैंड फंडेड,
0: न्यूजीलैंड गवर्नमेंट
1: फंडेड थी, और जो वहाँ एक सिरका थिएटर है जो कि नथिंग टू डू विद इंडियंस, सिरका थिएटर इज गोरों का थिएटर है, लाइक आई वुड से यू नो द लोकल न्यूजीलैंडर्स थिएटर।
0: अरे,
1: सो उनकी ओपनिंग थी, तो ओपनिंग में मेरा प्ले उन्होंने एक्चुअली
0: इंग्लिश प्ले था वो,
1: हाँ इंग्लिश में सारा,
0: वहीं के बच्चों को आपने ट्रेन किया?
1: हाँ, और लेकिन मैंने क्या रीजन किया, मैंने उसको इंडियन स्वरूप दिया।
0: अच्छा,
1: पूरे को
0: ओके
1: जो डिजाइन किया या जो कोरियोग्राफ किया था मैंने उसको
0: इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल
1: सब इंडियन थे कॉस्ट्यूम सब इंडियन ओनली लैंग्वेज इंग्लिश चुनी हमने
0: क्या बात है
1: तो आई वुड से इंडियन प्ले इन इंग्लिश
0: क्या बात है बट बाय इंग्लिश किड्स
1: बाय इंग्लिश किड्स एंड सम इंडियन मिक्स
0: अच्छा
1: ऐसे करके किया था तो बड़ा अच्छा लगा उनको फिर वो करते रहे फिर वो सारा काम मेरा 9 मंथ्स में खत्म हो गया मेरे पास 11 महीने और थे मैं क्या करूँगा यार यहाँ यू नो मैं वो खर्चा पानी देना पड़ेगा जेब से मतलब नहीं ना एक्सपेंसिव कंट्री है यू नो आई वांट टू गो बैक
0: अच्छा
1: तो बोला कि यार भाई जस्ट स्टे हियर मैं क्या कैसे स्टे हो सकता हूँ क्योंकि ना घर के अंदर कोई पीआर किसने अप्लाई किया कोई जानते नहीं कैसे रहते हैं ना घर में कोई था नहीं जो एब्रोड गया हो
0: ऑफ कोर्स
1: तो उसको सारी ये ना पीआर होता
0: है
1: पता नॉलेज ही था
0: और ये क्या कौन से साल की बात होगी
1: 1995
0: मिड 90s अरे वाह
1: तो मुझे पता
0: तो वैसे ही बड़े मुश्किल कुछ लोगों को ही पता होगा न्यूजीलैंड भी कोई कंट्री है
1: तो ये जो पीआर शिप वगैरह होती है इसके सॉरी पीआर वगैरह होती है तो मुझे पता नहीं था और
0: अच्छा।
1: कि मैं स्टूपिड था हमने कभी उस तरफ देखा ही नहीं उसकी जानकारी नहीं
0: क्योंकि आप तो काम करने आ रहे थे
1: काम करने आ रहे थे कभी जानकारी लिए और ना कभी ये था कभी सोचा था कि कहीं हम कभी जाके रहे तो आई थिंक मेरी जो मंजिल थी ना मुझे यहाँ बुला रही थी शायद कहते हैं कि वो
0: बार बार नॉक हो रहा था
1: फिर आई वॉज क्वालिफाइड उन्होंने बोला कि हाँ उन सब क्वालिफिकेशन तो पता ही नहीं थी अप्लाई फॉर पीआर ऐसे हाउ आई कैन अप्लाई फॉर पीआर कोई इंडियन किसी इंडियन को नहीं जानता था उस वक्त में
0: अच्छा
1: सारा मेरे ही पल्टन न्यूजीलैंडर थी सारी तो फिर गया अप्लाई फिर एक दो लोगों से मिलाया उन्होंने अप्लाई किया एंड आई गॉट द पीआर के पीआर के बाद यू हैव टू स्टे हियर फॉरएवर
0: राइट
1: किस्मत बुलाती ना आपको
0: दाना पानी बोलते
1: हैं लेकिन उसके पीछे मेरी मेहनत भी थी
0: ऑफकोर्स
1: तो उसके पीछे काफी बहुत मेहनत की मैंने उसके लिए और ऑफकोर्स
0: तो उसके बाद थिएटर चलता रहा न्यूजीलैंड में
1: फिर वही जब हम एब्रोड हो जाते हैं तो बहुत सारी हमारी अभिलाषाएं होती है हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो जो थिएटर्स कमाई होती है वाज़न्ट इनफ
0: अच्छा ऑफ कोर्स क्योंकि वो ब्रेड एंड बटर के लिए तो नहीं होता
1: फिर आई स्टार्टेड फिर मैं कहा क्या करूं सारी क्वालिफिकेशन तो हो गई आई वाज यंग ओनली 21 बाय देन तो चलो ऐसा करता हूं आईटी करता हूं सो आईटी काफी चल रहा था जस्ट स्टार्टेड यू नो तो मैं फिर आईटी में मैंने डिग्री ली
0: ओके
1: तीन साल की होती है मुझे मैंने 2 साल में कर ली क्योंकि मुझे अपनी इंडियन क्वालिफिकेशन का थोड़ा सा एक क्रेडिट मिल गया था एक साल बच गया था
0: राइट राइट
1: तो बेसिक सब्जेक्ट के मिल गया बस टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं मिले क्रेडिट मिल गया तो मैंने 2 साल में हो गया देन आई स्टार्ट जॉब इन आईटी
0: ओके
1: फॉर वाइल वहाँ फिर मैं सिडनी भी आया था एक प्रोजेक्ट करने उसके बाद
0: अच्छा
1: फिर लेकिन आई एम आर्टिस्ट
0: कीड़ा तो वही है
1: कोडिंग करने में मजे नहीं आ रहा मेरे ना लोगों से मिलने का हो रहा है लेकिन मैं बैठा मैं कहा यार मजे नहीं आ रहा है यार कोडिंग करो ये करो बोला ये फिक्स करो वो करो यू नो मजा ही नहीं आ रहा है तो क्या करें तो मैंने वो सर वो जॉब भी छोड़ दी
0: ओके
1: मेरा बैडमिंटन खेलता था वो भी छूट गया था उस वजह से तो मैंने जॉब भी छोड़ दी लोगों से मिलना नहीं होता था आप एक कमरे में ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठे हो
0: सिडनी किस वजह से आए थे
1: सिडनी एक्चुअली मेरी बेटी थी उसको डॉक्टर बनना था
0: थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा फैमिली लाइफ कैसे स्टार्ट हुई थी 21 साल के बाद
1: ओके
0: न्यूजीलैंड में
1: नहीं मैं वाइफ इंडिया से थी उदयपुर से
0: अच्छा
1: तो मेरी शादी बहुत जल्दी थी
0: अच्छा
1: व्हेन आई वाज 21
0: मुझे लगा था कि राजस्थान से वो बाल विवाह किया होगा
1: समझ लो बाल विवाह समझ लो
0: बालिका वधू
1: अच्छा फिर वहां से शुरुआत हुई एंड देन आईटी जैसे बताया आईटी छोड़ दी फिर क्या करें फिर एक छोटा सा बिजनेस लिया टू लर्न माई सेल्फ हाउ टू देखो मैं तो राजस्थान से हूँ मारवाड़ी खून है बिजनेस वाई जाता है ना कैसे कैसे करके लेकिन जाना जरूरी है तो मैं गया छोटा सा बिजनेस लिया समझा सारे बिजनेस को 2 साल छोटे से बिजनेस चलाया देन ऑफ नाउ टाइम फॉर मी टू गेट ए नेक्स्ट देन वी पुट अ बिग बिजनेस एंड देन सिंस देन आई नेवर लुक्ड बैक
0: राइट राइट सो या तो आज भीम जी अच्छे बिजनेस में चल रहे हैं साथ साथ इवेंट्स भी कर रहे हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आकर के द जर्नी वाज इजी न्यूजीलैंड में थे तो थोड़ा सा वैसा ही सिमिलर कंट्री या इट वाज अ डिफरेंट और ऑल
1: टुगेदर नहीं नहीं आई वुड से इजी शुरू में तो नहीं बोलूंगा भला आए थे एक बार वी वर वेल एस्टेब्लिश्ड इन न्यूजीलैंड 17 इयर्स वी वर लिविंग वी हैव बिल्ट आवर ओन होम यू नो बच्चे सब वहीं पढ़ रहे थे सब कुछ था बिजनेस वाज रनिंग वेल एंड वी प्रोड्यूस एज आई सेड आई प्रोड्यूस 3 मूवीज देयर एज वेल
0: अच्छा
1: व्हाइल देयर
0: वो इंग्लिश मूवीज थी
1: हां इंग्लिश मूवी थी नथिंग टू डू इंडियंस एट ऑल
0: एंड दे वर शॉर्ट मूवीज
1: नो देयर वाज टू डॉक्यूमेंट्रीज 90 मिनट्स ईच सकते
0: हैं। अभी YouTube पर हैं किसी प्लेटफॉर्म?
1: नहीं नहीं, वो हमने राइट्स किसी और को दे रखे हैं।
0: अच्छा, आप दिखा भी नहीं सकते किसी को?
1: हाँ, दिखा नहीं सकते, हम राइट्स किसी बेच देते हैं, तो अभी वो एक्सपायर होने वाले हैं राइट्स, देन वी विल गेट बैक, तो वो है। तो एक और एक फीचर मूवी थी एज वेल,
0: अच्छा,
1: उसको स्मॉल लाइफ,
0: इट वाज अबाउट
1: अबाउट ए चाइल्ड वेटिंग फॉर हर सॉरी हिज फादर,
0: अरे वाह,
1: एंड ही नेवर कम बैक,
0: ओह
1: सो इट्स वेटिंग फॉर यू,
0: क्या बात है, बड़े ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। कहीं आपने फिल्म बता दी, कहीं बॉलीवुड वाले सुन ले तो उन्होंने बना देंगे इसके ऊपर।
1: तो बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया है जिंदगी में।
0: तो ऑस्ट्रेलिया आकर के कभी फिर इधर डॉक्यूमेंट्रीज या फीचर फिल्म मेकिंग इसमें नहीं आता समय?
1: दे ऑल अबाउट पैशन, यू नो, अब जब पैशन के साथ अगर ज्यादा पैसा इन्वॉल्व हो जाता देन यू हैव टू
0: एक चीज छोड़नी पड़ती।
1: तो फिर मैंने चढ़ा कि छोड़ दिया फिल्म का, क्योंकि नीड अ लॉट ऑफ मनी देयर, यू नो, नाउ डेज यू से ओटीटी देयर, सो मेनी प्लेटफॉर्म्स देयर, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर विल स्ट्रगल अगेन, अनलेस आप पूछे भीम जी रेडियो हाजी को फिल्म बनानी है, आई एम हैप्पी टू मेक इट, बिकॉज रेडियो हाजी है ब्रांड है, प्लेटफॉर्म है, रेडियो हाजी कैन डिस्ट्रीब्यूट हिज ओन मूवी, फॉर मी producing and directing myself and putting in the market, no will come.
0: Right. वो थोड़ी एक limitation है.
1: तो limitation है.
0: तो बात कर रहे थे सिडनी में, फिर आए तो आप?
1: बस सिडनी में आए हम लोग, थोड़ा बिजनेस वगैरह किया, कुछ हिकअप्स आए बिजनेस में, we learned lots and हमने ऐसा बिजनेस किया जो कभी हमने किया ही नहीं।
0: अच्छा,
1: कॉन्फिडेंस इसलिए था कि आई वॉज वेरी गुड इन पीआर शिप, तो मैं कहा कर लेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें जो पीछे होती ना, पर्दे के पीछे, उसको नजरअंदाज कर दिया शायद, ये मेरी गलती हुई, मानता हूँ मैं।
0: तो इनिशियली आपको घाटे
1: वाले, इनिशियली मैं घाटा हुआ कि वो बिजनेस जो हम नहीं करते थे ना वो किया, तो अगर करना था तो अगर जो भी मुझे सुन रहे हैं आपके लिसनर्स हैं उनको प्लीज वॉट एवर यू डू प्लीज डू ए फुल रिसर्च, लर्न अबाउट दैट बिजनेस फर्स्ट एंड देन यू जंप इन।
0: ठीक है,
1: हमने सोचा कि हमारे हमने बिजनेस किया हुआ हम ये भी कर लेंगे, लेकिन नहीं,
0: सारे बिजनेस एक जैसे,
1: सारे बिजनेस एक जैसे नहीं होते। तो इसमें लॉस वॉस करके हम घर बैठ गए, फिर क्या करें, मैंने कहा वही करो जो आता, उसको हम बोलते हैं हिंदी में जिसका काम उसी को साजे। तो फिर हमने आई वेंट बैक टू माय सुपरमार्केट एंड लिक्वर स्टोर बैक।
0: अच्छा,
1: एंड सिंस देन आई नेवर लुक बैक।
0: ओके, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा इवेंट सबसे पहले आपका था?
1: सबसे पहले मैंने किया था सुखिंदर सिंह।
0: ओके,
1: हाँ,
0: अच्छा,
1: तो उसके अंदर मेरे उसमें मेरे पार्टनर्स भी थे, आई वोंट से आई डिड माय सेल्फ ओनली, बट आई वाज वन,
0: पर आपने वो स्टार्ट,
1: आई वाज वन ऑफ द पार्टनर एज वेल।
0: ओके,
1: एंड बट सारी मार्केटिंग वगैरह है इसमें, काफी मैंने एफर्ट्स डाले थे स्पॉन्सरशिप में, मैंने काफी एफर्ट्स डाले थे एंड आई पुट सम माय फंड एज वेल इन देयर।
0: तो अच्छा गया इवेंट सिडनी?
1: हां, दैट वाज गुड, इवेंट वाज गुड, फैंटास्टिक, यू
0: नो। और ये कब की बात है?
1: ये 2023,
0: राइट,
1: माय फर्स्ट इवेंट आई डिड इन एसोसिएशन विद अदर
0: पार्टनर्स के साथ। उसके बाद फिर
1: मैंने उसके बाद गुरदास मान किया with some other partners as well, I was one of the partners as well, then उसके बाद हमने शान किया,
0: अरे वाह,
1: and then उसके बाद आरिफ लोहर किया, and उसके बाद अभिजीत भट्टाचार्य किया, and then फिर खान साहब, राहत फतेह अली खान साहब, 2024,
0: right,
1: in June, I think 30th, 29th of June 2024,
0: अच्छा,
1: we did as well, it was a fantastic houseful show,
0: क्या बात है,
1: and I was very blessed this time, 2 months ago, myself national promoter of Rahat Fateh Ali Khan.
0: Kya baat hai, are wah,
1: and I have my friend Arun Sharma, you know, joined me as well, and he is a fantastic man, and we executed very well.
0: Abhi business, event, family life, how do you manage, kaise kisko kitna time prefer, kisko karte ho ke zyada time idhar?
1: Main sabko deta hu barabar time, business ko bhi deta hu ki bread and butter hai, events bhi hai usme bhi बटर रहता है, ऐसी बात,
0: ज्यादा टाइम ले जाता है,
1: लेकिन ज्यादा टाइम रहता है, तो यू कांट एक्चुअली द इवेंट में एक चीज बताऊंगा कि या तो आप फुल टाइम कर रहे हो, यू बिकम ब्रेड बटर, अगर आप में अगर आपके पास दूसरे बिजनेस हैं, इफ यू डूइंग दिस वन बहुत टाइम देना पड़ता है इसके अंदर, अगर आप इफ यू डूइंग ओनली फॉर द मनी देन
0: मत करो
1: ठीक है, उसके बाद ठीक है जितना टाइम देते हो उतना पैसा नहीं मिलता।

0: फिर मेरी लाइफ यहीं खत्म हो जाएगी. आपको सीखना हमेशा है, यू नो, हर चीज हर वक्त कुछ न कुछ आपको सीखना है. तो सीखना छोड़ना नहीं चाहिए इंसान को किसी भी उम्र हो. यार मैंने इतने सारे इवेंट कर लिए, आई नो एवरीथिंग. नो, यू विल मेक द मिस्टेक, स्टिल यू मेक द मिस्टेक. तो सीखना है, आगे भी सीखते हैं, सीखता रहूंगा. और यू नहीं कहूंगा कि मेरा ये बस ही हो गया, अच्छे को एक आर्टिस्ट आएगा और कैरी ऑन. यू नो, अभी दो चार प्रोजेक्ट आ रहे हैं फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए. वी आर टॉकिंग एंड नेगोशिएटिंग विद आर्टिस्ट एंड ट्राइंग टू डू फ्यू मोर, यू नो, a tour around New Zealand and Australia, and we targeting actually in Singapore, Jakarta and Bangkok as well.
1: अरे वाह.
0: Yeah, so that's how बात चल रही है. कितनी success होती है वो पता नहीं, but in general भगवान का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद, दोस्तों की शुभकामनाएं हमेशा मेरे साथ रही है. मेरे सारे बॉक्स टिक कर लिए हमने.
1: अरे वाह.
0: You know,
1: क्या बात है.
0: देखो पैसा, मैं नहीं कहूंगा बहुत पैसा कमाया, ऐसा भी नहीं. पैसा तो आप
1: उतना जितनी सेटिस्फेक्शन हो
0: उतना है. सभी मेरे सारे बॉक्स से आज जाना है, कपिल भाई से मिलने, चाय पीने, फट से निकल गए. यू नो, छुट्टी लेके बॉस को बोलना नहीं पड़ता है, 5 मिनट में आ रहा हूँ.
1: करेक्ट,
0: यू नो,
1: करेक्ट.
0: सो
1: उस लेवल पर,
0: तो भी उस लेवल पे सबके आशीर्वाद से और भगवान का बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने मतलब मुझे यहाँ तक पहुँचाया.
1: मेरा तीन ये चीजें इसलिए मैंने मेंशन की थी कि फैमिली लाइफ, एक सोशल लाइफ भी होती है, इनफैक्ट फोर्थ है, इवेंट्स है, बिजनेस है. तो इनमें से कब टाइम निकलता है व्हेन यू फील के अभी भीम एक अपना जोन में है, एक मी टाइम में है, तो वो कब निकालते हो, निकालते हो या नहीं, पॉसिबल होता है?
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, मैं निकाल देता हूँ फैमिली के साथ. तो ऑफ कोर्स जब भी मौका मिले, जितना समय हो अपने फैमिली के साथ निकालें आप, स्पेशली बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को जाना है एक दिन.
1: करेक्ट.
0: और मेरे बच्चे उस स्टेज पे आ गए कि हालांकि वो छोड़ के जाने वाले नहीं है, बट इतने बड़े हो गए कि दे कैन लीव देमसेल्फ.
1: करेक्ट.
0: अभी सभी साथ रहते हैं घर पे, सो इट्स फाइन. बट उनके साथ जितना आप समय बिता सकें बिताएं. और स्पेशली जो उनके जो भी लिसनर हैं, जिनके यंग किड्स हैं, डोंट इग्नोर देम.
1: ओके.
0: मैं उनको सजेस्ट करूं,
1: लाइफ लेसन है,
0: जितना टाइम उनसे साथ बिता सकते हो आप बिता लो. जैसे 10-12 साल के हो जाएंगे वो अपने कमरे में चले जाएंगे, आप बस वेट करते जाओगे कब अपने कमरे से बाहर निकले, मैं हेलो करें, हमारे साथ बैठ के खाना.
1: फैमिली बॉन्डिंग होने के बावजूद भी ऐसा आपको लगता है कि हो जाता है इस कंट्री में?
0: होता है. उनका बच्चों का फॉल्ट नहीं है.
1: कल्चर ही ऐसा,
0: कल्चर ऐसा है. इवन दो बैक इन इंडिया में ऐसे ही होता है, यू नो. तो अपने जितना छोटे हैं तब तक कहना मानेंगे, जैसे 12-13 साल के होंगे फिर उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं, उनके फोन आ जाते हैं, उनके ग्रुप बन जाते हैं. सो ऐसा नहीं कि वो मिस यूज कर रहे हैं आपको, वो उनकी जिंदगी अलग हो जाती है.
1: करेक्ट.
0: तो आपको लगता है यार बच्चा हमें टाइम नहीं दे रहा है. बच्चा टाइम नहीं, वो बच्चे का कल्चर अलग है. यू हैव टू अंडरस्टैंड आपके बच्चे, उसकी साइकोलॉजी, उसकी मानसिकता को आपको समझ लो कि इज गोइंग डिफरेंट स्टेज नाउ, यू नो, कल्चर डिफरेंस एज वेल. हम उसको बनाएंगे ना, हम तो और पंजाबी लुंडा है तो पंजाबी रहेगा, ये नहीं है. पंजाबी कल्चर सिखाई है उसे, आपने सारे अदब सिखाई है उसको, जिसमें हम सिखाते ना पंजाबी, तो एग्जाम्पल दिया है. तो हमारे जो राजस्थानी अदब है या हमारे भारतीय संस्कृति के जो अदब हैं उनको वो सिखाओ, उनको कैरी ऑन करते रहेंगे. जैसे मेरे बच्चे हैं, दे बोर्न इन न्यूजीलैंड, बहुत प्यारी हिंदी बोलते हैं विदाउट एक्सेंट.
1: अरे वाह.
0: रीड राइट नहीं कर सकते हैं,
1: इंडियन जैसे.
0: हाँ, इंडियन जैसे बोलते हो तो सब बोलते, सर आर यू फ्रॉम
1: इवेंट्स India? में कैसे उनका रिएक्शन क्या होता है कि पापा आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो या ये आर्टिस्ट या वो आर्टिस्ट, ऐसे कोई फीडबैक उनकी होती है कि ये बढ़िया रहा पापा?
0: आई थिंक बढ़िया रहा, अच्छा, दे आर हैप्पी बिकॉज़ आई एम हैप्पी.
1: बट डू यू टेक देयर फीडबैक एज सीरियस फीडबैक और आपको लगता है?
0: कभी कभी लेते हैं, उनका फीडबैक भी लेते हैं कि पापा वहाँ ये हो गया था, ऐसे करना चाहिए थे आपको, आपको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए था. देखो हम भी के जोश में बोल जाते हैं, ऐसे नहीं आपको ऐसे बोलना चाहिए, तो ऐसे ऐसे करना आपको वहाँ वैसा करना चाहिए. तो दे गिव यू लिटिल बिट एडवाइस एज वेल.
1: क्या सुनना क्या पसंद करते हो, फेवरेट पास्ट टाइम?
0: मैं किशोर कुमार के
1: अरे
0: गीत सुनता हूँ.
1: क्या बात.
0: और कभी कभी गुनगुना भी देता हूँ.
1: वो कभी कभी आज क्यों नहीं?
0: अब वो
1: कोई सा भी किशोर कुमार का जो आपको लगता है बेस्ट सॉन्ग, मतलब मूवीज वगैरह देखे ना आप, टाइम लग जाता है?
0: हाँ, नहीं, मूवी देखता रहता हूँ, मूवी देखता रहता हूँ.
1: आई गेस मेरे पास एक सॉन्ग है आपके लिए, वो मैं आपको शुरू करवा देता हूँ, बट आपको फिर आगे उसको गाना पड़ेगा. आई थिंक आपको वो गाना पता भी है शायद. सही है.

0: एक अजनबी हसीना से। सुर तो नहीं है लेकिन गाने की आदत है।
1: क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। अभी जैसे घूमने वगैरह के फेवरेट डेस्टिनेशन वगैरह ऐसा कुछ रहता है कि यहाँ घूमने जाना है वहां जाना है, क्योंकि न्यूजीलैंड तो लोगों की डेस्टिनेशन है, वो आप छोड़ करके आ।
0: सबसे अच्छी बात है कि हम न्यूजीलैंड में पूरा न्यूजीलैंड घूम चुके हैं हम लोग।
1: अच्छा,
0: वाइल वी देयर सो
1: ट्रैवल वेरी वेल, जापान रह रहे थे,
0: ट्रैवल वेरी वेल सो इट इज गुड। अब ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा जब भी मौका मिलता है। एंड अभी यूरोप मैं कभी गया नहीं, और यूरोप जाना बहुत पहले से जा रहा था, जाना चाहता था, लेकिन जब भी हम यूरोप का सोचते हैं चलो इंडिया चल लेते हैं तो सब हम तो लोग इंडिया निकल जाते हैं बच्चों के साथ। अब यूरोप का हम बना रहे हैं नेक्स्ट ईयर, एंड आई वुड लाइक टू एक्चुअली यूरोप के अंदर में आई वुड लाइक टू गो जर्मन, इटली एंड इटली एंड या इन यूके।
1: सिडनी का फिर इतना जब घूम लिए, सिडनी का व्हाट डू यू थिंक, के कैसा, हाउ डू यू इवैल्यूएट दिस सिटी?
0: ओह, इट्स अमेजिंग सिटी। मुझे इतना मजा आता है यहाँ रहने में, इतना मजा आता रहने में। ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड मजा नहीं आता, लेकिन इसका रीजन है क्योंकि न्यूजीलैंड था कोल्ड कंट्री है, आइसोलेटेड है, लोग कम थे उस वक्त, अब तो बहुत ज्यादा होंगे, कम थे लोग, नजर नहीं आते थे। तो कई बार ऐसा लगता है कि यार वी आर मिसिंग, बिकॉज हम भीड़ भाड़ से आए हैं ना इंडिया से, तो मिसिंग समथिंग, इसलिए हम लोग इंडिया चले जाते थे। वहाँ न्यूजीलैंड में हर दो साल में इंडिया चले जाते थे, दो तीन तीन महीने के लिए चले जाते थे, क्योंकि वो मिस करते थे ना।
1: करेक्ट।
0: तो यू बिलीव नॉट, जब से मैं सिडनी में शूट हुआ था 2013, मैं एक बार गया था शॉर्ट पीरियड के लिए।
1: अच्छा।
0: उसके बाद मैं 6.5 साल तक नहीं गया।
1: अरे
0: इच्छा नहीं होती जाने की, मतलब सब कुछ यहाँ मिलता
1: है,
0: यहाँ गौतम कपिल जी हैं, यहाँ ये दोस्त हैं, यहाँ एनवायरमेंट है, यहाँ ये हैरिस पार्क है जो लिटिल इंडिया बन गया है, तो वो एनवायरमेंट मिल रहा था,
1: मिल रहा है।
0: तो चाहे हम आस पास को जानते नहीं जाए, लेकिन लगता है कि नहीं यार ये है
1: फैमिली लाइक एक एनवायरनमेंट मिल रहा है।
0: हाँ, एनवायरनमेंट मिल रहा है। एक छोटा सा स्ट्रीट में जाते हैं, लोग चलते हुए नजर आते हैं, अपने देश के भी आते हैं, दूसरे देश के भी आते हैं, ऐसा लगता है कि समथिंग थोड़ा लाइवनेस थी। तो इसलिए इंडिया फिर हमने मिस करना ही हमने किया ही नहीं।
1: चाइल्ड थिएटर का अभी डू यू हैव एनी प्लान के यहाँ पर कुछ धीरे धीरे आगे चल के थोड़ा कुछ करना, क्योंकि दैट थिंग आई थिंक के वो आपके एक पैशन में से निकली हुई है।
0: हाँ हाँ, लेकिन इट्स वेरी हार्ड,
1: यहाँ पर हार्ड
0: है, वेरी हार्ड है। थिएटर इज वेरी हार्ड, आई मीन यू नो इट्स वेरी हार्ड नाउ, एंड आई एम मोर फोकस ऑन इवेंट्स, यू नो वो है।
1: राइट। चले ठीक है, थैंक यू भीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, टाइम दिया, बातें की, और वो जो एक साइड मैंने लोगों को बताई है कि वो एक नॉटी साइड भी है भीम जी की, वो रेडियो पर भी नहीं दिखा सकते, वो जो डांस करते हैं, वो जो मस्ती आप में आती है,
0: वो
1: जो आप अपने आप एक जो वो कहते हैं कि अंदर का बच्चा नहीं मरना चाहिए,
0: नहीं
1: अंदर
0: का
1: बच्चा रहना चाहिए।
0: बिफोर यू स्विच ऑफ आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच रेडियो हां जी एंड कपिल जी, गौतम कपिल जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड प्लीज डू कम एंड जॉइन अस। एंड आपको लिसनर्स को भी बता देता हूँ कि वी हैविंग ए खान साहब इज धुरंधर एक्सपीरियंस इज कमिंग ऑन 31st of October इन सिडनी एट नॉर्वेस्ट हब। प्लीज डू कम, इज अमेजिंग शो, इज अमेजिंग सिंगर, ही सिंगिंग पंजाबी, बॉलीवुड, दिस इज नॉट फॉर मनी दिस टाइम, इज मोर लाइक दिवाली आ रही ना,
1: मोर लाइक
0: दिवाली की धूम,
1: दिवाली पे धूम, दिवाली के पटाखे फोड़ेंगे। थैंक यू सो मच भीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू यू केम हियर, और ये गाना सुनते हैं, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।

0: वेरी बी ओपन रेंज जू में हाथियों के बारे में जानें, एलिफेंट ट्रेल की सैर करें और इन शानदार वन्य जीवों का उनके विशाल प्राकृतिक आवास में अनुभव लें। हाथियों के झुंड को एक साथ देखें और उनके अनोखे रिश्तों और व्यवहारों को जानें, जो उन्हें इतना अद्भुत बनाते हैं। आज ही zoo.org.au पर अपनी यात्रा की योजना बनाएं।
1: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिना को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप। टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
2: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजास, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल immigration.com.au।
0: हर घर विच असी अपने प्यारियां दा ख्याल रखदे हां। छोटियां छोटियां आदतां जो असी घर विच अपनाउंदे हां, ओह भी इसे देखभाल दा हिस्सा हन। अपने परिवार नूं सुरक्षित रखण दे तरीके साडी रोजाना जिंदगी दा हिस्सा बन जांदे हन। यही कारण है कि यारा वैली वाटर भी तुहाडे पीण वाले पानी नूं सुरक्षित रखण लई उसे तरह पूरा ख्याल रखता है। ज्यादातर पानी सुरक्षित कैचमेंटा तो आंदा है अते तुहाडे घर तक पहुंचन तो पहला बकायदा जांचा जांदा है। अते हर रोज साडे भाईचारे दे परिवार टूटी तो सीधा पानी पीण दा आनंद लैंदे हन। इसलिए जदों तुसी अपनी टूटी खोलदे हो तां तुसी पूरे भरोसे नाल उस विचों सीधा पानी पी सकदे हो। हर बूंद विच भरोसा, यारा वैली वाटर।
4: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
5: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
6: Desh bhakti to yaad aa gayi.
7: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
4: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
8: Woh ye border chal rahi hai?
4: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
9: Mainu apni navi dukaan li premium 3D illuminated sign di urgent lod si. Quick signage ne in-house design, printing te professional installation sirf 4 तो 5 दिनों विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स। अपनी बिजनेस नु चमकाओ। कॉल 1300-151616 quicksignage.com.au।
10: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लैंडिंग।
11: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
12: की होया,
11: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
12: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नु, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉय स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
11: या 90-77-93
12: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
11: याद रखो 9077-9733।
12: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
11: हर कदम तुहाडे नाल।
13: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुण टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े घर नु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुण ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या अज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
14: Attention.
8: attention, ladies and gentlemen. This is your captain. 30 flights, Melbourne to India, ya Pakistan. Sydney to India, ya Pakistan. Kithe bhi ja sakti hai.
14: Attention, please. Dil kehta hai kar jana hai. Flight search karke thak gaye. Switch karo Hi-Fi Travel Stay. Your local travel agency. Rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book karni hai? Aaj hi call karo 1300-533-311 te. Ya online book karo hi-fitravels.com.au te.

आशिका नु तनहाई विच मारना कोई हनेरे तो सिखे अखां विच अखां पाके झूठ बोलना कोई तेरे तो सिखे।

0: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
1: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनू चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 समर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
0: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
3: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध, नियम और शर्तें लागू।
4: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
5: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
4: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
6: टेंशन मेरी टेंशन
7: की होया,
6: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
7: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो VY इमिग्रेशन नु, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉय स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
6: या 90-77-97-33
7: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
6: याद रखो 9077-9733।
7: VY इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
6: हर कदम तुहाडे नाल।
8: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर, वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग।
9: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
10: हाँ जी रेडियो

0: This autumn, laugh out loud with Ayushmann Khurrana and Sara Ali Khan in Urda Teer.
1: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
2: Desh bhakti to yaad aa gayi.
3: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
0: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
4: Udhe ek border chal rahi hai.
0: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai from October 9th at cinemas near you.
5: Hun thode modde naal modda mila ke thodi tarakki di raah nu hor vi saukha ate surakhit banaun da vaada karda hai Very Bee Toyota.
6: Jithe hai Toyota di best technology, best customer सर्विस अति बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो फिर भी टोयोटा दे नाल
5: बेस्टी लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
7: सोना चाहिदा
8: भरोसा चाहिदा
7: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर Dazzling diamonds, ate gemstones, custom jewelry, thode order te ready. Purana sona buyback and exchange turant. Cash chahida, gold loan easy and safe. Repair, bullion buying, selling, sab ek hi jagah. Te ovi wajib rate te. Delhi Jewelers, 310/2 Main Street, Point Cook. Call 0493-536-042.
9: Attention, ladies and gentlemen, this is your captain. Thode flights Melbourne to India ya Pakistan. Sydney to India ya Pakistan kithe bhi ja sakdi hai.
5: Attention please, dil kehta hai kar jana hai. Flight search karke thak gaye. Switch karo Hi-Fi Travels te. Your local travel agency. Rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book karni hai? Aaj hi call karo 1300-533-311 te. Ya online book karo hi-fi-travels.com.au te.
10: Delhi ki yatra ka vichar bana rahe hain? Melbourne se Qantas ki seedhi udaan uplabdh hai. Bazaaron ki ronak dekhein ya apno ke saath fir se samay bitayein. Adbhut smarakon ko niharein ya ghar ke bane bhojan ka maza lein. Chahe aap doston aur parivar se milne ja rahe hon ya kisi nayi jagah ki khoj kar rahe hon. Qantas ki behtareen सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन पेय सामान और मनोरंजन शामिल है आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉन स्टॉप उड़ान बुक कीजिए 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध नियम और शर्तें लागू

0: रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन का मसला ना जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जो स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच,
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सन विच भी तुहाडी सेवा विच।
3: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
1: हम थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
5: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग, वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
6: दिस ऑटम लाफ आउट लाउड विद आयुष्मान खुराना एंड सारा अली खान इन उड़ता तीर।
7: एक पाकिस्तानी जासूस हिंदुस्तान जाएगा,
8: देशभक्ति तो याद आ गई,
9: देश कौन सा है ये भूल गया।
6: अ स्पाई मिशन गॉन रॉन्ग विद हिलेरियस मोमेंट्स।
8: बॉर्डर चल रही है?
6: नहीं जी, ये तो उड़ता तीर चल रहा है फ्रॉम अक्टूबर 9th एट सिनेमाज नियर यू।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नु, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जो स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ली एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 और पैरामेटा सिडनी अति न्यू दिल्ली विच भी। आई एम ई एडवाइजर।

0: इंडिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ली एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02 9063 1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर
1: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार
1: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
2: आहो जी आहो
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टंच विच वी तुहाडी सेवा विच

0: परेशानी। सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉगबुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तों ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
3: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Sara Ali Khan in Urda Teer.
4: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
5: Desh bhakti to yaad aa gayi.
6: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
3: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
7: Abhi ek border chal rahi hai.
3: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
2: Mera desh incredible India. Trugnina vich apne har bhain bhra nu unna de desh da swaad ate masale ethe de reha hai. Tusi ethe Indian masale, दालां, ग्रोसरी दा हर सामान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी ले नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनेना विच।

0: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्स्टिट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस एमपी द्वारा अधिकृत सदर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य लेवल 1670 चैपल स्ट्रीट साउथ 11 davidavis.com.in।
1: जी तुसी बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तो हाडे ले कर देने, बंसल लॉयर्स। तो हाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
2: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए, हुण थोड़े मोढे नाल मोढा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरीबी टोयोटा।
3: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरीबी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरीबी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालिया नू लीगल वालिया नू एथे परदेस विच समझाऊंगा किवे।
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है। सिंक स्मैश रिपेयर वालिया ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, 11 हॉल।

0: तुम्हारी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनां विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स। अपनी बिजनेस नू चमकाओ। कॉल 1300-151616 quicksignage.com.au।
2: दिवाली रोशनी का त्योहार तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं। इसमें 4 चांद, रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
3: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
4: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
5: Desh bhakti to yaad aa gayi.
6: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
3: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
6: Aur ye border chal rahi hai?
3: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
7: Are you ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you at Kangan Institute. Call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.
8: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।
1: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पैसा, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
2: पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
5: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
4: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
6: ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਰਗੇਜ ਉੱਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿਲਸ ਵੀ ਰਾਕੇਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ।
7: ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੈਟਰੀ ਰੀਬੇਟ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ।
8: ਫਿਰ ਲਵਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ?
7: ਸਨ ਕਰੰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। 2012 ਤੋਂ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ ਸੋਲਰ ਕੰਪਨੀ।
9: ਅੱਜ ਹੀ ਸਨ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ 0406-021-246 ਤੇ।
10: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं। इसमें चार चांद, रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
11: ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ।
12: ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੋਇਟਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੈਰਬੀ ਟੋਇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ।
11: ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0431-465-186 ਤੇ 212-216 ਓਲਡ ਜੀ ਲੌਂਗ ਰੋਡ, ਹੋਪਰਸ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ। ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਇਟਾ, ਦ ਸਮਾਰਟ ਚੋਇਸ।
9: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ AI ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਿਉਂ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਡਿਲੇ ਇਨ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਡੈਮੇਜ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਸਲ ਲਾਇਰਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ। ਕਾਲ 422-905-860 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ bansallawyers.com.au।
13: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Sara Ali Khan in Urda Teer.
14: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
15: Desh bhakti to yaad aa gayi.
16: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
13: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
17: Udhe ek border chal rahi hai.
13: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
18: Australia cha apna kar lena hai ya construction karwani hai? Mortgage refinance karwani, navi car khareedni ya बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तब टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडिनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वद लेंडर्स दिनाल तो हर डे ले बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग।
19: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਟਾਇਰਸ, ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰਸ, ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਨ ਸਟੌਪ ਸ਼ੌਪ। ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਯੂਨਿਟ 1, 19-25 ਸੋਮਾਟਨ ਰੋਡ, ਕੈਂਪਲਫੀਲਡ। ਕਾਲ 03908-6655 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ
8: fireforce.com.au।
15: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए नी लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन। हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।
17: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्सटीट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस एमपी द्वारा अधिकृत सदर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य लेवल 1-670 चैपल स्ट्रीट साउथ 11 daviddavis.com.au।
20: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो दियो मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
21: सोना चाहिदा,
22: भरोसा चाहिदा,
21: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
23: पिछले साल मैनूं मानसिक सट लगी सी, ए हौली हौली बढ़दी गई अते एक समां जिहा आया जदों मैं बिल्कुल टुट गई। मेरी टीम दे मैंबर लगातार मेरा हाल चाल पुछदे रहे अते मैनूं अपने नाल जुड़े होण दा एहसास करवाउंदे रहे। असी मिल के मेरे काम ते वापस आउण दा राह लभिया। दिन विच कुछ घंटे काम करना भी मेरी सेहत जाबी विच बहुत अहम रहा है। काम ते वापस आउण नाल मैनूं अपनी जिंदगी दा मकसद मुड़ मिल गया है।
24: काम वाली थां ते लगी सड़ तो बाद मुड़ काम ते आउणा सौखा नहीं हुंदा, पर अपनी जिंदगी मुड़ ली ते लिआउण दा एक अहम हिस्सा है। गल करदे रहो, योजना बनाउंदे रहो, लगे रहो। वर्क सेफ, रिटर्न टू वर्क लिख के सर्च करो।

0: this autumn, laugh out loud with Ayushman Khurrana and Saad Ali Khan in Urta Teer.
1: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
2: Desh bhakti to yaad aage.
3: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
0: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
4: Woh ye border chal rahi hai?
0: Nahi ji, ye to Urta Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
5: Delhi ki yatra ka vichar bana rahe hain? Melbourne se Qantas ki seedhi udaan uplabdh hai. Bazaaron ki ronak dekhein ya apno ke saath fir se samay bitaye. Adbhut smarakon ko निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें, चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पैसा, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉन स्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
6: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
7: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
6: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
8: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
9: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
8: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
9: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
10: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी लै जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वो भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनां च भी तुहाडे आपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
11: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्सटीट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस एमपी द्वारा अधिकृत सदर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य लेवल 1-670 चैपल स्ट्रीट साउथ यारा daviddavis.com।
12: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4-5 दिनां विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स। अपनी बिजनेस नू चमकाओ, कॉल 1300-151616 quicksignage.com.au।
13: किथे वज गई तेरी गड्डी?
14: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू एथे प्रदेस विच समझाऊंगा किवें?
13: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
15: हाँ जी, हाँ जी, ओए हाँ जी, हाँ जी,
16: हाँ जी रेडियो

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है कि प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
3: हाँ जी हाँ जी।

0: अज दा विचार अज दी कहानी हर रोज तुसी सुन दे हो शो हांजी मेलबर्न विच तो हाड़ी डिमांड उते आओ एक बार फिर सुन दे हां इस हफ्ते दी एक बेहतरीन कहानी
1: रेडियो हांजी 1674 एम आस करदे हां दिन तुहाडा वधिया जा रहा होवेगा। समा हो चुका अज दी कहानी दा अज दे विचार दा। अज दी कहानी चीन दे नाल रिलेटेड है। कहिंदे ने एक वारी तीन बुद्धे सी उत्थे जिहड़े हसदे रहिंदे हमेशा जिथे भी किते जांदे जिथे भी किते बहिंदे हमेशा हसदे रहिंदे खुल के हसदे ते इसे करके वो लोकां दे विच हसण वाले बुद्धे करके जाने जांदे। लोकां नूं किन्नियां भी दुख तकलीफां हुंदियां जदों भी उन्हां नूं वेख लैंदे उन्हां दीआं सारीआं परेशानियां दूर हो जांदियां। जदों भी किसे पिंड दे विच पहुंचदे लोकी पुज के उन्हां नूं वेखण जांदे बच्चे बुढ़े जवान औरतां सारे इन्हां नूं वेखण दे लई मिलण दे लई आउंदे। बहुता बोलदे नहीं सिर्फ हसदे। कोई अपनी परेशानी कोई दुख तकलीफ जाके इन्हां नूं दसदा ते तां वी उहदे उत्ते खुल के हसदे इन्ना हसदे कि उस दुखी दा अपने आप हासा निकल जांदा। इस वजह दे करके लोक इन्हां नूं काफ़ी श्रद्धा दे नाल पूजना शुरू कर देंदे। दूर दरेडे तक इंतजार रहिंदा होवे ना ते अज ये बुद्धे साडे घर आउण अज ये बुद्धे साडे पिंड आउण। हर एक नगर दे विच ये उडीक रहिंदी पर मन मर्जी दे मालक जिथे जी करदा उत्थे जांदे जिथे नहीं जी करदा नहीं जांदे। खूब इंजॉय करदे लोकां दीआं आपस दे विच गल्लां हुंदियां कि इन्हां नूं कोई दुख तकलीफ नहीं इन्हां नूं कदी उदास नहीं वेख्या इन्हां नूं कदी रोंदे नहीं वेख्या। लोकी जिदा इस चीज़ की ताकत विच सी कि कदी ये भी त्याखर इंसान ने इन्हां नूं भी कितें दुख तकलीफ दे विच वेखीए इंसानी दिमाग है ना अपने नालों उन्हां नूं अलग करके किदां वेख सकते हैं। कहिंदे ने एक दिन एक नगर दे विच पहुंचे एक पिंड दे विच पहुंचे तीनों जने जोर जोर ती हस रहे ने बस हस रहे ने ते हस रहे ने इदां दा पहला कदी हासा किसी ने नहीं वेख्या इन्हां दा। अज इन्ना क तेज ते इन्ना क लम्मा हस रहे ने जिदां पता नहीं किड्डी क वड्डी खुशी मिल गई होवे। खौरे अज की वेख लिया होवे हसदे हसदे हसदे हसदे लोकां दे विच हले गल्लां चल ही रहियां ने कि इन्ना ज़्यादा हस्यां ते बंदा मर भी सकदा ते इन्हें दे विच पटाक देनी एक तिन्ना दे विचों धरती दे उत्ते डिगा ते धरती दे उत्ते डिगदे ही अपने सवास छड्डते। बाकी दे बचे दो बुद्धे उन्हूं वेखदे ने कि अपने सवास छड्ड गया फिर हसना शुरू कर देंदे ने। लोक हैरान ने क्योंकि लोग चाहुंदे जी कि इन्हां दा साथी अज दुनिया छड्ड गया हसदे हसदे मर गया इन्हां नूं रोना चाहीदा इन्हां नूं दुख करना चाहीदा। तरह तरह दीआं गल्लां हो रहीआं ने पर इन्हां नूं कोई परवाह नहीं इहनूं अपनी गोदी दे विच रख के हस रहे ने उसे तरह ही जिदां पहलां हसदे ही। हासा थोड़ा जिहा मध्यम पैण दे उत्ते बाकी कुछ लोग तां चले गए पर कुछ सियाणे लोग पिंड दे अगे आए जानण दी कोशिश कीती कि तुसीं हस क्यों रहे हो। थोड़ा हौसला करके बुद्धिआं नूं पुछिआ ते उन्हां ने कहा जदों आपां तुहाडे पिंड वल नूं आ रहे सी ना ते इस साडे साथी ने साडे नाल शर्त लाई ही इन्हें कहा ही चलो अज वेखदे आं हुण बजुर्ग हो चुके आ दुनिया तो जाण दा समां आ गया चलो भला अज वेखदे आं हसदे हसदे किहड़ा पहलां दुनिया नूं छड्ड के जांदा ते जिहड़ा हसदे हसदे अज पहलां मर गया उह साडे चों जित गया ते खुशकिस्मती वेखो इहदी इहो ही जित गया इन्ना कह के फिर हसण लग पैंदे ने। लोकां नूं समझ नहीं आउंदी कि उह करन ते की करन की दुख करन इहनां दे नाल। आखरी किरिया कर्म दा इंतजाम कीता गया ते बाकी बचे दो बुद्धिआं ने कहा तुहानूं पता है जांदे जांदे सानूं इह वी कह के गया सी कि मेरे किरिया कर्म दे उत्ते नवें कपड़े मैनूं ना पाए जाण जिहड़े कपड़ियां दे विच मैं हाँ उन्ना ही कपड़ियां दे विच मैनूं अग लाई जावे। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਿਓਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁੱਧੇ ਫਿਰ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਅੱਗ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਸਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਿਵਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੁੱਧੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੁੱਧੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਪੇ ਹੀ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੁੱਧਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ,

0: ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ, ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ।
1: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पैसा, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉन स्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
2: ਨਾ ਦੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू। हम थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, the smart choice.

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077973
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: ओपा जी एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुण इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने
3: हुण टेंशन छड्डो जी गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुण सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान बिजली दा बिल घट टेंशन भी घट
4: फिर लवाइए कित्थों
3: सन करंट वालिया कोलों 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी
4: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246

0: शर्ता लागू।
1: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
2: की हुआ
1: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
2: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
1: या 90-77-97-33
2: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
1: याद रखो 90779733।
2: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
1: हर कदम तो आडे नाल।
3: हां जी।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच
1: हुन थोड़े मोढे नाल मोढा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
3: हां जी रेडियो।

0: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनों च भी तुहाडे आपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
1: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Sada Ali Khan in Urda Teer.
2: एक पाकिस्तानी जासूस हिंदुस्तान जाएगा।
3: देशभक्ति तो याद आ गई।
4: देश कौन सा है? ये भूल गया।
1: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
5: ये border चल रही है?
1: नहीं जी, ये तो Urda Teer चल रहा है। From October 9th at cinemas near you.

0: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। ज्वेलर्स परोसे दी निशानी।
1: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।

0: एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन। 30 फ्लाइट्स मेलबर्न तो इंडिया या पाकिस्तान, सिडनी तो इंडिया या पाकिस्तान, कितने भी जा सकती है।
1: अटेंशन प्लीज, दिल कहता है कर जाना है, फ्लाइट सर्च करके थक गए, स्विच करो हाई फाई ट्रेवल से। योर लोकल ट्रेवल एजेंसी रेटेड 4.9 स्टार ऑन गूगल। बुक नाउ पे लेटर। फ्लाइट बुक करनी है आज ही कॉल करो 1300-533-311 पे या ऑनलाइन बुक करो highfivetravels.com.au पे।
2: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी
3: हां जी रेडियो

0: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्म आके गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था,
1: आंखें खुली हो या हो।

अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक एवै जानिए सब आपे सच्यार थाप्या न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नान गाविए गुने निधान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हासो कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार बती माई जे हों जाना आखा नाई कहना कथन न जाई गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जित सुपावा विन पाने के नाय करी जेती सृष्ट उफाई वेखा विन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुने गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाव रहाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर न आवे ता वात न पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरै नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे ते हा कोई न सुजे जे तिस गुण कोई करे सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै तर तवल आकाश सुनै दीप लोप पाताल सुनै पोह न सके काल नानक

एक बार जो तुद पावै साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाक सार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पाख खाए।

वक्त न पाया का दिया जे लिखन ले कुरान हितवार ना जोगी जाने रुत महा ना कोई जां करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सलाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सबको आख है एक दू एक सियाणा वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा का होवे नानक दे को आपो जाने अगे गया न सो है पाताला पाताल लख आकाशा आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सेंस अठारा कहन कतेबा असलू एक तात लेखा होए तां लिखी है लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत न पाईया नदियां अत्ते वाह पवे समुंद न जानिए समुंद सा सुल्तान गिरिया सेती माल तन कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरे अंत न सिफती कहन न अंत अंत न करने दे न अंत अंत न

ना पाए जाए ए अंत न जाने कोए, बहुता कही है बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते मंगे जोत अपार, केत्या गंत नहीं विचार, केते खप टुटे वेकार, केते लैले मुकर पाहे, केते मूर्ख खाई खाए, केतिया दुख भूख सदमार, ए भेदात तेरी दातार, बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए, जे को खाए आखन पाए, ओ जाने

आप श्री मुखवागपात सही दसवी छपे चंतो प्रसाद चक्र चेनी हर वर्ण जाति हर पात निंजय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तो कह जाय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जय तिर भवन में सुर नार्य सुर नेत नेत मंत्र कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाजे नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अबारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्भर्मे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेषे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाये नमस्तंग अबाये नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संयोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तरमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अभेशे नमस्तंग नितामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभू नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तंग अभेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्मे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तु द्याले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्व दंदे नमो सत वंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चात्री चांतो प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अभू है अलेख है अभेख है अनाम है अकाम है अदय है अभय है अजीत है अभीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अभूत है अभर्ण है अगंज है अभंज है अजूज है अजंज है अमीक है रफीक है अदंत है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अजूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अभ्रम है अजीत है अभीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है प्रियांक प्रिया छंद।

अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रभंगी परमाते समस्ती प्रभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्रपाने नमो।

प्रेत अप्रेत देवेशु तर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणाशी अनूपे अरूपे समस्तल निवासी सदा सिद्ध दाबुद दाभ्यर्ध करता अधो उर्ध अर्धं अगोग हर्ता परं परं परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयारं अछेति अपेदी अनाम अकामं समस्तो पराजी समस्तस्त तामं तेरा जोर चातुरी छंद जलय हैं थलय हैं अभीत हैं अभय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अवेश हैं प्रियं पुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्त्वं निनाथे नमस्त्वं परमाते नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अभंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साय नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्व तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंजंत्रंग नमो सर्व दिसंग नमो सर्व कृत्संग नमो सर्व रंगे त्रभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग परसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग पनासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचान तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे आलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुनकाल जत तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अरना पेश जाकर रूप रेख नराग जात्र तात्र दिशा विशा हुए फैलो नराग नाम काम भहीन पे खुद ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानताए एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेधरक तेव रूप रंग न जात पासो जानी कह जेव तात मात न जात जाकर जन्म मर्म ही चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरती लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप्यो सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्त्यो सुजंबव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेक अंग राग न रंग जाके जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकुदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपे सर्व शास्त्र जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पागत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार मैं माया पर आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनाथ

कालान कान अनुभूत अंग अभावंगत में तपार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलक्ष्य कंस आदिष्टे तरम सर्वां वर्णांडिये अंडंड भांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृश्य अकृषय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभेज वेश के आगाज कर्म के आभंज भरम के आभेज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्ण के बेपूत करण के राजम प्रवाह के धर्म तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानिए के सर्वत्र दानिए के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानीय के सर्वत्र जापिय के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहेब कलाम के हुसन वजू है तमामल रजू है हमेशा सलाम सली खुदा में गनी बुल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरकत स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रवाह है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगादे सुभंग स्वरूपागे सो सर्वान रागे त्रिपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथुल परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नर गनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमित अमिक है सदैव परवाह है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के
हाजर हजूर है, मेशल सलाम है, समस्तल कलाम है, के साहिब दिमाग है, के उसन चराग है, के कामल करीम है, के राज करीम है, के रोजी दहंद है, के राज करहंद है, करीमुल कुमाल है, के हुसन जमाल है, गनीमुल खराज है, गरीबुल निवाज है, हरीफुल सकन है, हिरासल फकन है, कलंकम परनास है, सुमस्तल निवास है, अगंजल गनीम है, रजायक रहीम है, सुमस्तल जुबा है, के साहिब के राह है, के नरकम परनास है, बिस्तल निवास है, के सरबल गवन है, के हमेशल रवन है, तमाम तमीज है, समस्त अदीस है, परंग परंग ईस है, समस्त अदीस है, अदेसल अलेख है, अभेसल अभेख है, जमीन जुमा है, अमी कुमा है, करीमल कुमाल है, के जुर जमाल है, के अचलंग प्रकाश है, कृमित्व सुबास है, के अजब स्वरूप है।

गुणगन मुदाम अर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुणगन प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड।

अंठन अबार आडीठ तरम अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना संतो प्रसाद करनाले अर काले है कल खंडर है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंग पार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वंभर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपातव है अग्रताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अग्रताकृता है तरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वंबर है करुणालय है निर्मनायक है सरुपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रवतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा में सर्वात्म में आत्म बस है जस के जस है प्रजांग प्रिया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम शंख शांत रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो भांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनाश अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे समस्तल निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तन स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबम सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते तो प्रसाद सोइए शराब समूह सिदान के देख फिरो करजोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधायक सन समूह अवनिगति के सारी देश को देख रहे हो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कूद पौन के गौन को जात निवारे पारी पजान कपूर बली बन्याव सीत न जात बिचारे इते पै तो कांपे पुपत अंत को नांगे पाएं बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंसत है हज राज हजारे पूत पवेख पवान के पुपत कौन गने नी जात बिचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जतार सब विचार हजार को देख है श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सुबा दुरंत दुबा सुसाज सनह दुर्जान

श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बड़े आर अवचार इसार की तार बछैया। तोर देश बुलंद बवासन माते गजान के मान मलैया। गाड़े गड़ान के तोरण हर सुबातन ही चकचार लवैया। साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया। दानव देव फिनन निशाचर पूत पवेख पवान जपेंगे। जीव जिते जल में

0: गजात गदान अनेक सोमर साज भरेंगे, ब्रह्म हेश्वर विष्णु सची पत अंत बसे जमफास भरेंगे। जे नर श्री पत के प्रस है भगते, नर फेर न दे तरेंगे। कां भयो जो दो लोचन मूंद कै, बैठ रहो भगत जन लगायो। नहात फिरयो लिए सात समुन्द्रन, लोग गयो पर लोग गो आयो। बास कियो बखियान सु बैठ कै, ऐसे ऐसे वैस बतायो। साच को सुन लियो सबै जिन प्रेम कियो, तिन ही प्रपायो। कहुं ले पायन पूतरियो सिर, कहुं ले लिंग ले ढलकायो। कहुं लिखियो हर अवाची दिशा में, कहुं पुछा को शीस नवायो। को बुतान को पूजत है पास, को मृतान को पूजन तायो। कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरण मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम कावो। आप हाथ दै मोहि बचावो, सुखी वसै मोरो परवारा। सेवक सिख सबै करतारा, मोर इच्छा निज कर दै करिया। सब बैरन को आज संगरिया, पूर्ण होए हमारी आशा। और भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ। जो बर चाहो सो तुम ते पाओ, सेवक सिख हमारे तारिय। चुन चुन सत्र हमारे मारिय, आप हाथ दे मुझे उबरिय। मरण काल का त्रास नवरिय, पूजो सदा हमारे पच्छा। सिरिया तुझो करो रक्षा, राख लो।

काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो, जमन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को शिवगुण सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, टीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतम दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पहचाने, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, देते बदन सृष्ट सब थारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही तेरत निरालम, जानत बेद भेद अल आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत पेदा, जा को पेव न पावत बेदा, ताको कर पाहन अनमानत, महामूड किछ भेद न जानत, महादेव को कह सदा शिव, निरंकार कर चिंत नहीं पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तोय तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कह सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पूपा, अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रज दीनी, कहो फू राजा हर बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव, आव रक्षा मेरी तुम करो, सिखु बार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रन काता, जे आज तो तब सरनी परे, दिन के दुष्ट दुखद है मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है, रच्छा होए ता सब काला।

0: अंतर आत्मे समाले आप छड़ सदा रह परने गुरबिन अवर न जाने कोए कह नानक सुनो संतो सो सिख सरमुख होए
1: जे को गुरु तेवे मुख होवे बिन सतगुरु।

सब सेती मन मिलिया सच्चै लाया भाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है।

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंधन।

सहज सहज मिलाया, काया सेज गुर शब्द सुखाली, ज्ञान तत् कर भोगो, आन दिन सुख माने।

ग्रंथ साहिब जी दे नवीन स्वरूपां दे उपर 773 अंग ते सवाईमान है। नाल सतगुरु जी ने हैडिंग लिखिया शांत। शांत दा अर्थ हुंदा जिस विच परमात्मा वाहगुरु दा जस कीता होवे। शांत रूप जेड़ी इस प्रकार ये बाणी श्री गुरु रामदास साहिब महाराज उच्चारण करदे ने, नाल ही सतगुरां दर्ज कर दिता घर पहला। जिस वेले गुरु के प्यारे सिख गुरु के प्यारे सिंह रागी इस नूं गायन करनगे, पहले घर ताल दे विच पा करके शब्द

समूह सारे जीवां दा प्रकाशता है। एक ने सारी दुनिया पैदा की, एक आप ही सारी दुनिया की पालना करी जांदा। सत ओ नाश तो रहत सच स्वरूप है, गो अज्ञानता दा हनेरा मेट के रू ज्ञान दा प्रकाश करन वाला है अकाल पुरख परमात्मा। प्रसाद का अर्थ है आनंद सुख स्वरूप। ऐसे वाहगुरु परमेश्वर जी की प्राप्ति सतगुरां की

महाराज जी ये परम पवित्र उपदेश सानू बख्शिश करदे ने। इस शब्द के अंदर सतगुरु जी ने एक ब्याह का अलंकार बनिया है, जिस प्रकार के नाल पुरातन समय के अंदर जिस वेले बच्चे ते बच्ची दे रिश्ते की खोज करते सन, अज भी खोज करते। पुराने समय बच्ची का जिहड़ा बाप हुंदा आप खोज करन जांदा, जां किसी कोई सियाने पतवंतियां नूं भेज दिंदा भी तुसी बच्ची वास्ते योग वर दी जिहड़ी ढूंढ करो। जदों ओह रिश्ते लभ जांदे सन, सब तों पहलां कुड़म ते कुड़माई का रिश्ता बनता है। बच्चे ते बच्ची का तो रिश्ता उस वेले बनना जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सन्मुख उन्हां दीआं लावां हो जांदीआं, पल्ला पकड़ाया जांदा, फिर वह पति सती दे रूप विच बनदे ने। जदों ये रिश्ते जुड़ जांदे ने उस वेले दोनों परिवारां दा कुड़माचारी का रिश्ता बन जांदा है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਲੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਏ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਮਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਗੁਰ ਚੇਤਨ ਪੁਰਖ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

0: सहज निर जतन ही सहज ज्ञान स्वरूप दे विच गुरु साहब उन्होंने मिला देंदे ने नेब देंदे हन
1: सेज गुर शब्द सुखाली
0: जिस वेले गुरु दे शब्द का कोई अभ्यास करता गुरु तो उपदेश लोके उहदी कमाई करता है काया सेज जेड़ी काया बुद्धि रूपी सेजा है ए सुखाली कई सुखां दा घर बन जांदी है उस दी सेजा पिया करके बुद्धि दे अंदर तमाम जेड़े सुखों नूं प्राप्त हो जांदे हन
1: तत्कार भोगो
0: जिस वेले गुरु साहिब जी ज्ञान बख्शिश कर देंदे ने जीव नूं शब्द का अभ्यास करदे होए नूं तां तत्कार भोगो का अर्थ जिहड़ा सिद्धांत रूप पर

संत की संगत क्यों मंगनी है, वो सानू गुरबाणी गवावेगा, गुरबाणी दे लड़ लावेगा। जिन्हें आप गुरबाणी गाई वो दूजे तो भी गवा देवेगा, जिन्हें आप सिमरन किया दूजे तो भी करवा देवेगा, जिन्हें आप दैवी गुण धारण किए दूजियां नूं भी गुणा विच टका देवेगा। इस करके उन्हां गुरु प्यारे महात्मा साधु संत जनां दा मेल करवा दिओ, उन्हां दी संगत विच मिल करके गुरबाणी नूं असीं भी गाउण वाले जिहड़े बखते बन जाइए।

मन बाणी शरीर करके बल बलिहार जाना करिए, तुसी आप देखो किस प्रकार निर्लेप हो करके वरतदे हो। ये जीव किवें झूठे पदार्थां दे विच खाचित हो रहा छल वल भी करने पैंदे ने। एक झूठ नूं छपाण वास्ते लखां झूठ बोलता है, फिर कपटी जिहड़ा छलिया बन जांदा है, किसी नूं पता ना लगे। कूड़ कपट कमावे, इस तरह छल ते कूड़ झूठ नूं कमांदा कमाई करदा, इहदा फल की होवेगा? महा दुख पावे। महा दा अर्थ महान दुख, सब तों वड्डा भारी महान दुख कुंभी नरक दा मन्ने। जिवें कुंभ नाम हुंदा घड़े दा, घड़े विच कोई जीव डिग पवे, कोई कीड़ा मकौड़ा डिग पवे, उहनूं बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जांदा, क्योंकि घड़ा उपरों तंग हुंदा, विचकारों खुला हुंदा ते हेठों फिर डूंघा हुंदा। क्यों? जिहड़ा कुंभी नरक विच डिग पैंदा उहनूं निकलना बड़ा मुश्किल बन जांदा। उते सतगुरु कृपा करन, अकाल पुरख परमात्मा आप कृपा करे ते काढ़ी नरक ते धूह सतगुरु नरकां चों भी कढ लैंदे ने। साध संगत जी, इस प्रकार कूड़ झूठा बंदा कपटी छलिया जिहड़ा इहदी कमाई करदा

अग्नि दुआले परिक्रमा करवाउंदे ने। असीं गुरु के प्यारे सिख धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरबाणी दीआं शब्द दीआं जिहड़ीआं परिक्रमा करदे हां, फेरे ताकत वाले उन्हां ब्रह्म ज्ञानी महापुरखां ने, ज्ञानवानां ने, ते जीव ते ईश्वर का परमात्मा का मिलाप करवाउणा सी। फिर फेरे जिहड़े परिक्रमा ने वह कहड़ियां, तत् का अर्थ सिद्धांत रूप परमात्मा ने समझ लैणा। इत्थे दो चीजा आ जांदियां जिहनूं विद्वान कहिंदे तत् मिथिया दे विवेचनवादी बन जाणा। तत् हुंदा सच ते मिथिया हुंदा झूठ, ते झूठा की इह संसार है, दुनिया की प्रीत, दुनिया के पदार्थ, जो कुछ दिसदा है, यह शरीर जिहड़ा है, यह सारी मिथिया ने, दिसदे नहीं परंतु सच्चे दे नाल नहीं वस्तुआं जांदियां। इहनूं जिहड़ा त्याग देना है, ते तत् हुंदा सच जिहड़ा उह परमेश्वर वाहिगुरू उहनूं ग्रहण कर लैणा। जां जिहड़े हंस हुंदे ने उन्हां दी चुंझ विच इन्नी खटियाई हुंदी, जेकर कोई दुध विच पाणी पा के हंस दे अगे रख देवे, जदों चुंझ उह पाउंदे ने कच्ची लस्सी दे विच, ते दुध फट के फुट्टां बन जांदा, ते पाणी वक्खरा हो जांदा, ते फुट्टां नूं खा लैंदे, पाणी छड्ड दिंदे ने। इसे तरह तत् मिथिया दे विवेचन वादी महापुरख गुरमुख प्यारियां दी सुरत रूप जिहड़ी चुंझ हुंदी जदों दुनिया विच पाउंदे ने, पदार्थां नूं पाणी वांग निकम्मी जाण के छड्ड दिंदे, परमात्मा दे नाम नूं ग्रहण कर लैंदे ने, इहनूं तत् मिथिया दे विवेचन वादी कहा जांदा। फेरे तत् दवाए, इस तरह तत् मिथिया दे विवेचन वादी जिहड़े बना देना जगियासू।

महान परमात्मा ने कीर्तन नाम कथी तेरी जिहवा सत नाम तेरा परा पूर्वला केड़ा केड़ा परमात्मा का नाम लिये नाम भी नवे ने स्वरूप भी नवे तो नवा परमात्मा का जिहो जी भावना उस तरह के दर्शन हो जाते हैं ते परमेश्वर वाहगुरु के कौतक भी नवे तो नवे हैं ते इस तरह के नाल सात नागतां ने बाल सिखाई बालक अवस्था तो लैके माता के उदर तो लैके जिहड़ा जीव का सिखाई

दर्शन। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास। पुण्य दर्शन यानी श्रवण के माध्यम से अध्यात्म के दर्शन, जहां हम हर रोज शास्त्रों और भक्तों की कथाओं से जीवन के लिए कोई ऐसी बात चुनने का प्रयास करते हैं जो हमारे मन को थोड़ा और भगवान की ओर ले जाए, ईश्वर की ओर ले जाए। आज एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं। अगर आपको कोई बता दे कि आपके जीवन में अब केवल 7 दिन शेष बचे हैं, तो आप उन 7 दिनों में क्या करेंगे? अपने बैंक खाते देखेंगे, संपत्ति की चिंता करेंगे, अधूरे काम पूरे करेंगे या भगवान को याद करेंगे? आज की कथा में एक राजा के सामने सचमुच यही परिस्थिति आई थी। उनके पास बहुत कुछ था, राज्य था, सम्मान था, परिवार था, ऐश्वर्य था, किंतु एक दिन एक शाप के चलते उन्हें पता चलता है कि उनके जीवन में केवल 7 दिन शेष बचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन 7 दिनों में उन्होंने जो निर्णय लिया, वही आज हमारे लिए भी बहुत बड़ा संदेश बन सकता है। किंतु आखिर वह राजा कौन थे और 7 दिन सुनकर उन्होंने सबसे पहले क्या किया, यह जानेंगे छोटे से अंतराल के बाद। जुड़े रहिए पुण्य दर्शन के साथ।

ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।

पुण्य दर्शन में आप हैं अपने दास के साथ। तो मित्रों, वह राजा थे महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित को जब यह ज्ञात हुआ कि अब उनके जीवन में केवल 7 दिन शेष हैं, तो उन्होंने अपने राजपाट, सुख सुविधाओं और सांसारिक जिम्मेवारियों से स्वयं को अलग किया और जीवन के अंतिम दिनों को भगवान के श्रवण में लगाने का निर्णय लिया। सोचिए, जिसके पास पूरा राज्य हो, जिसके पास धन और सम्मान हो, वह 7 दिन की बात सुनकर क्या करता। किंतु परीक्षित महाराज ने समझ लिया कि जिस चीज को हम अपना समझकर बैठे हैं, वह सब एक दिन यहीं छूट जाना है। उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा, मनुष्य को मृत्यु के समय क्या करना चाहिए, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, भगवान को कैसे याद किया जाए। और मित्रों, फिर शुरू हुआ भगवान की कथा का वह दिव्य श्रवण, जिसने परीक्षित महाराज के जीवन के अंतिम 7 दिनों को संसार की चिंता से निकालकर भगवान के स्मरण में लगा दिया। अब जरा अपने जीवन को इससे जोड़ कर देखिए। हमें 7 दिन की सूचना नहीं मिली है, इसीलिए शायद हम 7 दिन को गंभीरता से नहीं लेते। हम कहते हैं अभी तो बहुत समय है, भगवान का नाम बाद में लेंगे, बहुत टाइम बचा है, शास्त्र बाद में पढ़ेंगे, मंदिर बाद में जाएंगे। किंतु अगर हमें भी पता चल जाए कि हमारे पास केवल 7 दिन हैं, तो क्या हमारी प्राथमिकताएं बदल नहीं जाएंगी। शायद यही कारण है कि शास्त्र हमें मृत्यु की याद दिलाते हैं, हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए। किंतु परीक्षित महाराज की कथा से हम ठीक ठीक क्या सीखना चाहिए, और आज हमें अपने जीवन में इसका एक छोटा सा प्रयोग कैसे करना चाहिए, सब बताऊंगा इस छोटे से अंतराल के बाद। मैं यूं गया यूं आया।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
1: आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। तो कथा का संदेश बहुत सीधा है मित्रों, भक्ति के लिए आखिरी 7 दिनों का इंतजार मत कीजिए। जो मनुष्य अंत समय में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह भगवान को प्राप्त करता है। ऐसा मैं नहीं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं। किंतु प्रश्न यह है कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण आएगा कैसे? जिस मन को हमने पूरी जिंदगी संसार की चिंताओं में लगा दिया, उसे अचानक भगवान में लगाना सरल नहीं होगा। इसीलिए स्मरण की तैयारी आज से करनी होगी मित्रों। यही पुण्य दर्शन का उद्देश्य भी है। रोज कुछ मिनट अपने जीवन की दौड़ को रोकिए और श्रवण के माध्यम से अध्यात्म के दर्शन कीजिए। आज एक छोटा सा अभ्यास शुरू करें। सुबह उठकर मोबाइल देखने से पहले 2 मिनट भगवान का नाम लीजिए। आपकी आस्था जिसमें भी है उनका नाम लीजिए। दिन में कुछ मिनट किसी प्रमाणिक शास्त्र की कथा सुनिए और रात को सोने से पहले एक बार मन में कहिए, हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आज जो कुछ अच्छा हुआ वह आपकी कृपा से हुआ और जो गलत हुआ उसे सुधारने की शक्ति भी आप ही मुझे दीजिए। हम नहीं जानते कि हमारे जीवन में कितने दिन शेष बाकी हैं, किंतु इतना करना हमारे हाथ में जरूर है कि जो दिन में आज मिला उसमें भगवान को हमने कितना स्थान दिया। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास। नमस्कार।

रेडियो हांजी 1674 AM ते थोड़ा स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन जी। उम्मीद करते हैं थोड़ा अज का दिन वधिया वधिया शुरू हो गया होएगा, कम्मा कारां वाल पै गए होंगे ते नाले हुन आया खड़ा जी वीकेंड, ते वीकेंड दी उडीकां शुडीकां होणगियां जी अज दे। हाँ जी मेलबर्न दे इस एपीसोड के अंदर, इस सैगमेंट के अंदर तुसी जुड़े पे हो मेरे नाल, यानी कि कृष्णा भारद्वाज दे नाल। तरीक है अज 9 अक्तूबर 2026, समा हो चुका है 7:05 सवेर दे। ते जिस तरह आप हर बार सिलसिलेवार अपने प्रोग्राम नू अगे वधाने हैं, अज भी आओ इस प्रोग्राम नू अगे वधाने हैं एक सुंदर शब्द कीर्तन दे नाल, उस वाली नू, उस रब नू, इस पैगंबर नू याद करके जिसने खूबसूरत जिंदगी दित्ती। आओ जी

0: टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच
1: हुण थोड़े मोढे नाल मोढा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
3: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurrana and Sada Ali Khan in Urda Teer.
4: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
5: Desh bhakti to yaad aa gayi.
6: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
3: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
7: Udhe ek border chal rahi hai.
3: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai from October 9th at cinemas near you.
8: बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
9: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहुंदे हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वो भी वधिया रेटां ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनां च भी तुहाडे अपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
10: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 27 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
0: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सोमर्टन रोड कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 or visit tireforce.com.au.
11: Attention ladies and gentlemen, this is your captain. 20 flights Melbourne to India ya Pakistan, Sydney to India ya Pakistan kithe bhi ja sakti hai.
8: Attention please, dil kehta hai kar jana hai, flight search karke thak gaye, switch karo hi-fi travel stay, your local travel agency.

0: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ AI ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਿਉਂ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਡਿਲੇ ਇਨ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਡੈਮੇਜ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਸਲ ਲਾਇਰਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ। ਕਾਲ 4229058860 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ bansallawyers.com.au।
1: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्टगेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494763700 और व्हाट्सएप 2Fold Lending।
2: सोना चाहिदा,
3: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग, सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042। किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, पाडे घर नु बनाए एकदम क्लासी, असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
4: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
5: अमृत, ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा, न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
4: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो, विजिट goldleafdairy.com।
6: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
7: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
6: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
7: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
1: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले, याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमार्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
8: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले, जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल, गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड, त्रुगनीना, अते 347 डॉनस्टेल स्ट्रीट, डैंडीनोंग। ज्वेलर्स।

जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजरबा ते जित अपनी। कॉल 4229058

रेडियो बाय कृष्णा भारद्वाज, वेलकम बैक टू हांजी मेलबर्न द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कैंट या शो, क्योंकि आज है फ्राइडे एंड फ्राइडे होता खुला खाड़ा एंड थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। ते आओ करिए मौजा शौजा, लास्ट लाइन सुन लो गाने दी दोबारा यार।

The urgent load scene. Quick signage ne in-house design, printing ते professional installation सिर्फ 4 तो 5 दिना विच पूरी कर दिती. Glowing shop front तो vehicle wraps तक. Brand पूरी street विच सब तो वख चमक उठया. Victoria ते South Australia विच 12 साला तो. Signage leaders, अपनी business नू चमकाओ. Call 1300 151616. Quicksignage.com.au.

0: ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ,
1: ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੋਇਟਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ।
0: ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0431-465-186 ਤੇ 212-216 ਓਲਡ ਜੀ ਲੌਂਗ ਰੋਡ, ਹਾਪਰਸ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ। ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਇਟਾ, ਦ ਸਮਾਰਟ ਚੋਇਸ।
2: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं। इसमें चार चांद, रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
3: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिना च भी तुहाडे अपनिया दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
0: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058 और विजिट bansallawyers.com।

0: इजी एंड सेफ। रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजब रेट ते। डेली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493536042।
1: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉन स्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
2: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्स्टिट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस एमपी द्वारा अधिकृत सदर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य लेवल 1-670 चैपल स्ट्रीट साउथ 11 davidavis.com.in।
0: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आएंगे लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन। हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 Farmers Road, Truganina, Ate 347 Lonsdale Street, Dandenong. Tunna Jewelers, Parose Di Nishani.

0: तुसी सुना सी आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर ब्रह्मचारी फिल्म शम्मी कपूर ते मुमताज दे उते फिल्माया गया आवाज जिथे तक मैनू पता है आई एम प्रीटी मच श्योर मोहम्मद रफी साहब दी ते सुमन कल्याणपुर शंकर जयकिशन का म्यूजिक वैसे एंड लिरिक्स जो प्लेफुल लिरिक्स ने शैलेंद्र दे लिखे हुए शंकर जयकिशन का जो म्यूजिक है टकीला सॉन्ग है जो है ना उस तो थोड़ा रलते मिलते जी ना वो भी सेटिंग ने ने ने ने इंस्पिरेशन इज द थिंग गाइस
1: ओपिनियर दे गाने च घोड़े दी टाप चलदी हुंदी है
0: एंड ऑन दैट नोट डुगड़ुम डुगड़ुम कर दो असी आ गए जी सेकंड सेगमेंट ते आज दे हां जी मेलबर्न दे खुले अखाड़े च क्योंकि आज फ्राइडे है आज तुसी सानू सारेयां नू वधिया वधिया जे गाने सुनाने हैं कवितावां सुनानी है थोड़े ना हफ्ते च सब तो कैंट की होया बई ये जरूर दसना ते इहदे अंदर आपां इक कॉलर जिन्हां दे नाल हफ्ते दे अंदर कैंट तां कुछ नहीं पर दस पाए हो पर उन्हां नाल ट्रैजेडी की हुंदी है बड़े फनी वे च ओह दस के गए ने बिन दी ट्रैजेडी बिन दी
1: ते घर घर दी कहानी है
0: हां घर घर कहानी है हमने आपको सुनानी है ते सानू तुसी जे चाहनो कि असीं थानू सुनाइए तो साडे नाल फिर सांझा करो ना यार की होया बेस्ट इस वीक थोड़े नाल
1: कृष्णा जी आज जेड़ा गाना तुसी सुनाया ना मैनू बहुत ही नॉस्टैल्जिक जिहा कर गया
0: क्योंकि
1: क्योंकि जदों गाना चलदा हुंदा सी ना।

0: ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਰਜਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ,
1: ਕੀ ਸੀਗਾ
0: ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨੀ ਦੱਸੂਗੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਰਜਨ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ।
1: ਚਲੋ ਬਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ,
0: ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੱਸੂਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਲ
1: ਤੇਰੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ।
0: ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ, ਦੈਨ ਆਈਲ ਟੈਲ ਯੂ ਮਾਈਨ।
1: ਯੈਸ, ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਨੋਨੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਏ ਰੱਖਣਗੇ ਗਾਇਜ਼।
0: ਦੇਖੋ ਵੈਨ ਇਟਸ ਕਮ ਟੂ ਮਸਤੀ,
1: ਯਾ
0: ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਡੀ।
1: ਯੈਸ,
0: ਚਾਰਜ ਅਪ,
1: ਚਾਰਜਡ ਅਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ,
0: ਹਮੇਸ਼ਾ।
1: That is good, that is good. ते हुन आपा इद्दा करदे कि आपा अपने कॉलर्स नूं भी थोड़ा फ्री करना शुरू करिए।
0: Yes, please, please,
1: ते आपा इद्दा करदे आपा अपना अगला कॉलर लैने हैं, ते इस सेगमेंट दा पहला कॉलर लैने हैं, जिन्ना करके मैं गाना लगाया क्योंकि यह अज भी काफ़ी सारी खवातीन जो इन्हां दी जिंदगी च आंदियां ने जांदियां ने, उन्हां नाल इह वाला गाने ते परफॉर्म करन दी काफी तौर तक मैनूं सुनन चाहे कोशिश करदे ने। ये साडे नाल जुड़ चुके ने रिचर्ड जी। रिचर्ड जी तुसी ऑन एयर हो, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल रिचर्ड जी।
2: सत श्री अकाल, सत श्री अकाल नोनिया जी एंड कृष्णा जी,
0: क्या हाल चाल?
2: बस बल्ले बल्ले ते शावा शावा।
0: या
1: मैंने सही इंट्रोडक्शन दी रिचर्ड
0: भाई, मुंह पर आसमां थले,
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: नाइस।
0: और मैं बल्ले बल्ले,
2: वेरी वेरी नॉस्टैल्जिक सॉन्ग लाइक नोनिया जी सेड, और मेरे मॉम डैड का फेवरेट था एंड मेरा भी फेवरेट है। तो हमारे घर में यही सब ओल्ड वाइनल रिकॉर्ड्स बजते थे।
0: यस,
1: अरे हाँ है ना, एक वो भी दौर सीगा वाइनल की, विनाइल की कहते हैं,
0: वाइनल
1: वाइनल वाइनल रिकॉर्ड्स था है ना। That's good. मैं इतने देखे ब्रंसविक के अंदर दो चार स्टोर्स ने, बट दे ओनली हैव मतलब इंग्लिश स्टोर, बट स्टिल जो वाइब है अंदर दी एंड ऑल दैट, इट्स वेरी नाइस,
0: वेरी नाइस, यस।
1: एक शार्म उधर चीज था।
2: बर्न वाइनल रिकॉर्ड नाउडेज, सो यू कैन डिजिटली, सो देयर आर शॉप्स व्हिच बर्न इट फॉर यू।
1: अच्छा, वाह क्या बात है।
2: या कट कट बोलते हैं या बर्न बोलते हैं? कट
0: बर्न, आई थिंक बर्न,
2: बर्न बर्न होएगा।
1: ਪੁੱਠੇ
0: ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਐਜ਼ ਅ ਕਿਡ?
2: ਪੁੱਠੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੋਤੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੇ।
1: अरे लाइक इन्होंने कहा कि उस समय
2: आगल बहुत अभी सब पुट्ठे काम कर रहा हूं, जो बचपन में नहीं किया वो सब पुट्ठे काम अभी कर रहा हूं।
0: ओहो, नहीं हम बचपन से ही पुट्ठे काम करते थे हम फिर हमने पीएचडी कर रखी है पुट्ठे कामों में,
2: पुट्ठे काम में कर रखी है
0: जी।
2: तो द बेसिक ऑफ द वीक इज एंड विल ऑलवेज बी फॉर आई थिंक द होल ईयर, it's a very proud moment for Radio Hanji family and Victoria. Can you please tell me what it is? Guess karo.
1: Ki Pauline Hanson hun election nahi lad rahi hai? Okay.
2: sports mein hamare Radio Hanji.
1: Acha nahi, mujhe nahi pata bhai kya hua.
0: Main aaj svere svere sunya Krishna ji cricket cricket khedan di koshish kar rahe ne
1: ki assi Fateh Nal Tampa le match da.
2: No, so Nani ji represented Victoria in the Masters hockey tournament and they won the silver medal against
0: Yippee!
1: Bale! Kya baat hai ji, vadhaiyan vadhaiyan.
2: Hats off to Nani ji. So kal main kya kehte hain Fox Radio mein line mein tha to announce that, because yesterday the segment was about what achievements has someone in your life done at a later stage.
0: Yeah.
2: And I couldn't think of anyone else than her, because the Masters is 65 years and above age group mein khela Nani ji ne.
0: Wow,
1: that's and great.
2: Aap logon ne to unko si game mein pata nahi dekha, and she took the lap of the oval just itne casually, jaise aadhe log to half way the.
0: Yeah.
2: But Nani ji just casually took a jog and came to her stand wherever she had to stand.
0: Wow.
1: Kya baat hai, kya baat hai. But sorry, aapne kaha Fox Radio par hi baat kar rahe the?
2: Haan.
1: Aave sade naal jaave kise hor na balle o chalak sajna. Eh to gal na
2: hai. Hamare radio ka bhi to wo jata hai, kya kehte hain, advertisement.
0: I also
2: say that she's a RJ with Radio Hanji.
1: ਉਲਟਾ ਨਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੋ, ਹਫਤੇ ਚ ਨਾ ਹਰ ਰੇਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਤਾ, ਕਹਿਤਾ ਗਾਇਸ ਗੋਇੰਗ ਗੁੱਡ ਪਰ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਫੋਨ।
0: ਕਰਤਾ After some, I'm pretty sure after some time they'll block your call.
1: जिथे चाहो थे रा देर देर ऑलवेज नवे नवे रेडियो स्टेशंस इनने सारे ने है ना
0: जिथे चाहो थे बिस्कुट हुंदा पुजिया हुंदा है रागी ने गया
1: बदाना पुजिया रियली मिसिंग बदाना पुजिया गाइस सानू ये भी दसो जे तुसी बदाना पुजिया मिस कर रहे हो कि नहीं क्या बात है ते रिचर्ड जी आज केड़ी कविता सुनाओगे सानू
2: नहीं नहीं नो नो कविता फन फैक्ट मेरा फ्रेंड के पास ये शोले का बाइक है
1: अच्छा
2: दिल्ली में दीस बाइक्स वर यूज्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी For okay. carrying cannons.
0: So
1: okay.
2: Yeah. Oh. So yes, my friend, he's a very senior commissioner in the customs. Mm-hmm. So bribe me, Lambretta scooters and bikes later. He's got the largest collection, I think, in India.
0: Wow.
2: His name is Desh Deepak Singh. Naam itna bada Desh Deepak.
1: Desh Deepak.
2: Kaam जलेबी की तरह सीधा
1: अरे मतलब रॉ द हेड है मतलब डैड माइट बी इन 70s है
2: या ही गॉट मेनी अवार्ड्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द प्रेसिडेंट
1: तो रिचर्ड जी एक काम करो ना तो आप वो अंकल जी से पता कराओ कि वो जो धुरंधर वाला जमाली था वो उन्होंने भेजा था रिकेश बेदी जी तो बता कर नहीं गए आप ही पता करा दो उनके एरा का ही होगा
2: ही इज अभी 89 इयर्स ओल्ड ही इज नॉट कीपिंग टू वेल जस्ट येस्टरडे आई स्पोक टू हिम बिकॉज़ ही वाज इन द आइस नॉट आइस ही इज रिकवरिंग सो बट गॉड ब्लेस हिम
0: वी विल प्रे फॉर हिज हेल्थ
2: थैंक यू वेरी मच तो बस आज के लिए बस इतना ही
1: थैंक यू रिचर्ड जी
2: ब्रेक के बाद
1: मिलते हैं नाली दोबारा हूं तुसी किस वाले नु कॉल करे को कि रेडियो हांजी ते खुला खड़ा चल रहा है ओ सुनो
0: उसमें चल रहा है आजकल तेरे मेरे नाप के कच्चे हर दुकान पर
1: फिर तो पक्का ब्लॉक होंगे भाई
2: फॉक्स गिव्स बेटर गिफ्ट्स देन किस
1: अच्छा
2: फॉक्स में अवार्ड बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं
1: बस तुसी मैं कह रहा जिथों भी तुसी लिसनर पटना चाहते हो पट लो बस गल खत्म थोड़ी इच्छा थैंक्स फॉर कॉलिंग गॉड ब्लेस
2: ओके जी ओके
0: थैंक यू वेरी मच रिचर्ड जी
1: बात है भाई रिचर्ड जी जो भी आते हैं ना मतलब कोई ना कोई घेंट जी गल जरूर दस के जाते हैं
0: एग्जैक्टली
1: तो इधरों लकी ऐसी जी कहते हैं कि टैलेंट तो मेरे में कूट कूट के भरा है
0: आई नो भैया आके दिखाओ तो
1: नहीं अगे सुनो ना कहते फर्क बस इतना है कि थोड़ा बारीक कूट दिया अब निकल नहीं रहा
0: इसे बोल दी पुकी लो
1: ना अगो उन्होंने गाना भी एक और भेजा कहते जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तो दूसरों पर इल्जाम लगाएं और फिर वहां से खिसक
0: जाएं
1: क्या बात है लाइफ लेसन एक लकी ऐसे जी सानू 11 बजे भेज रहे ने ते सवेरे 4:15 बजे सानू जसवाल भाजी भी भेज देंदे ने देखो थानू गाइस और किथों मिलेगा ये सब असी ही दे सकदे हां
0: नोबडी एल्स
1: कि नहीं ते इधरों 40 पार की सहेलियां नहीं ये मैं अपनी कोई गल नहीं कर रहा गाइस वेट करो रुको जरा ए सानू भेजे जी 40 पार की सहेलियां लिखत भेजी है सुखविंदर कौर जी ने ते थानू सुनाने हैं जी कि
0: मेरे नाल तर रिलेट कर दी नहीं मैं हले 40 क्रॉस नहीं की
1: हां नहीं यू आर जस्ट 39 and quarter
0: क्वार्टर दी क्यों याद करा दिया जो भी फ्राइडे है
1: मैं जिन्ना झूठ बोलना लागे तो बोलना ना ज्यादा दूर ना नहीं बोलना चाहिए ते कहंदे ने उम्र के 40 से पायदान पर आकर जब जिम्मेदारियों का शोर कुछ थमता है तब आईने के सामने खड़ी होकर एक औरत पहली बार खुद से अपना हाल पूछती है बरसों जिया सबके लिए सबके मुताबिक पर जब अब मन अपनी थोड़ी सी जमीन चाहता है इस मोड़ पर जहां धूप थोड़ी ढलने लगी है उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसकी खामोशी समझता है और तब काम आती हैं वो सहेलियां जिनसे कोई खून का रिश्ता तो नहीं होता पर जो उसी चौंके के धुएं से तप कर आई हैं वो सिर्फ सहेलियां नहीं एक दूसरे की परछाई हैं घुटनों का दर्द हो या मन की उदासी, बिना किसी झिझक के सब कह दिया जाता है। दुनिया भर के कायदे और सलीके